सुप्रभात, मेरे वेब 330.lev विश्व नितिन मीटर यानी 900 किलो हर्ट्ज एवं FM बैंड स्वदेश में लव्विक मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:55 और 36 सेकेंड में आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी गोरखपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले

0: 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आरंभ होती है आज की वंदना।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: ये थी आज की वंदना। आज अपने जिन कलाकारों को सुना उनके नाम थे हरिओम शरण, शुभा मुद्गल, ओम व्यास घोष, नवाभसन तथा मिथिलेश तिवारी। वंदना आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित की गई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: आजकल जीवन में

0: मित्र तो बहुत बनाते हैं। देखिए, मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसे हम स्वयं से बनाते हैं। सारे संबंधों में तो किसी न किसी कारण से सारे संबंध बनते हैं, लेकिन मित्रता ऐसा संबंध है जिसे हम आप स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में मित्र बनाते हैं। मित्र कहीं ना कहीं वो एक ऐसा संबंध है जिस संबंधों के सामने सारे संबंध फीके पड़ जाते हैं। वह एक ऐसा संबंध है कि बचपन का व्यक्ति अगर बुढ़ापे में मिलता है तो बालपन का सारा आनंद सामने परिलक्षित होने लगता है। न दृष्टिगोचर होते हुए भी अदृश्य रूप से लगता है कि सब कुछ हमारा बचपना सामने आ गया। यह है मित्रता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, सुदामा चरित्र को श्रवण किया होगा। सुदामा चरित्र साधारणतः हम एक भागवत की कथा में एक कहानी को मान लें, ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, पहले तो भयभीत थे कि पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, परंतु जब पता चला कि सुदामा जी आए हुए हैं, और इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए सुधर्मा सभा से और सुदामा जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी का, देखिए, मित्रता में कभी भी भौतिकवाद का समावेश नहीं होना चाहिए कि धन के मित्र तो बहुत बन जाएंगे, कोई धनाढ्य है कोई गरीब है वो मित्रता नहीं है, वो तो समय के अनुसार लोगों का संबंध है। मित्रता तो अंतःकरण से होता है जिसमें बाह्य रूप से आपकी व्यवस्थाओं का कोई असर नहीं होता। सुदामा जी ने देखा कि इतनी बड़ी सभा से उच्च सिंहासन से उतर के मुझे गले से लगा लिया। सुदामा जी भी रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। कई दिनों तक सुदामा जी रहे, चावल खाए, इन सारी कथाएं आप जानते हैं। और जब सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी, भगवान ने अपनी पीताम्बरी धोती दी कि तुम पहन लो। कई दिनों तक, जितने दिनों तक रहे वो पीताम्बरी धोती पहने रहे, फटी धोती उनकी भगवान ने निकलवा कर अच्छे से वस्त्र धारण करवाया। जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रता की वैशिष्टता का मैं निवेदन कर रहा हूँ। सुदामा जी ने कहा कि मित्र मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी समझ रहे थे, चूंकि दो लोगों का दान दे ही चुके थे, दो लोगों का। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र तुम मेरी इस पीताम्बरी को निकाल करके अपनी धोती पहन लो, ये मेरी धोती है। तो सुदामा जी को लगा कि यह मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है, द्वारिका का राजा है, और उसके बाद भी मेरी दशा को देख करके भी मेरी धोती निकालने को कह रहा है। सुदामा जी ने विचार किया, क्या करें, राजा की बात माननी ही पड़ेगी। तो उन्होंने धोती निकाल के अपनी फटी धोती पहन ली। सुदामा जी जब द्वारिका से गुजरने लगे तो कुछ दूर पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा कि मित्र मैं फिर आऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहा, बिल्कुल आइएगा। सुदामा जी को लगा कि अब तो कुछ दे दे। दूर पहुंचे, द्वारिका के लोग देख रहे हैं, जैसे आया था व्यक्ति वैसे ही जा रहा है। बहुत दूर जाने के बाद अंतिम बार उन्होंने कहा, मित्र मैं जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा, फिर आइएगा। सुदामा जी ने कहा कि एक बार आने के बाद तुमने कुछ मुझे दिया ही नहीं और कह रहे हो फिर आइएगा। अब प्रश्न उठा कि सुदामा जैसा ब्रह्मवित्त, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम वर्णन है श्रीमद् भागवत में, कि जो जितेंद्रिय हो, जो सिंहलोक्ष वृत्ति से जिसका जीवन चल रहा हो, ऐसे सुदामा जी मांग रहे हो और भगवान श्री कृष्ण न दे रहे हो, ये दोनों समझ में नहीं आती, क्या कारण है। तो भाव है कि जब सुदामा जी महाराज द्वारिका में प्रविष्ट हुए तो द्वारिका वालों ने देखा तो कोई कहा कि लगता है कोई विरक्त संत है, किसी ने कहा लगता है कोई याचक है जो भिक्षाटन के लिए आया है, अभी कुछ लेकर के जाएगा। तो भगवान ने विचार किया, अगर मैं सुदामा जी को पीताम्बरी पहनवा के भेजूंगा तो पूरे द्वारिका वाले मेरे मित्र को एक संत और एक दिव्य ब्राह्मण के रूप में, चाहे दिव्य सिलोक्ष वृत्ति को धारण करके ब्रह्मवित्त के रूप में न देख करके किसी भिखारी के रूप में देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए नहीं दिए कुछ प्रत्यक्ष रूप से कि मेरे मित्र को कोई भिखारी न कहे, और सुदामा जी इसलिए मांगते हैं कि मेरे पत्नी मेरे मित्र को कुछ न कहे। एक दूसरे के मान सम्मान को अपना मान सम्मान बना लेना, यह मित्रता का सबसे प्रमुख लक्षण है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण लीजिए सुनिए आज के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से पाठ। पर होगा हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम पर वसुहानी। 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम हिट सुपर हिट। सुगम संगीत में 9:50 पर कलाकार होंगे स्वप्निल। 9:30 पर आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से उर्दू प्रोग्राम। फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गाने गुनगुनाते आज प्रसारित होगा 10:05 पर।

लोकगीतों के हमारे कार्यक्रम लोक रंग में भोला यादव और साथी होंगे आज के कलाकार 11:05 पेश। गीतांजलि कार्यक्रम सुनिएगा 11:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गाने सुहाने। 12:50 पर सुनेगा सुगम संगीत, कलाकार होंगे हरिहरन। सेहत की बातें कार्यक्रम में 1:15 पर आज डॉक्टर मोहम्मद असगर अली खान से मनीष त्रिवेदी की बातचीत प्रसारित होगी। विषय होगा रेल अस्पताल तथा हमारा स्वास्थ्य। खेती किसानी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की वार्ता, पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:05 पर। इसमें आज का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह, करियर की बातें। इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी। साथ ही यूथ आइकन चिराग यादव से बातचीत सुनवाई जाएगी। ग्राम जगत कार्यक्रम में आज चर्चा किया जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर। लोकगीत आपको सुनाएंगे मदन मोहन। श्री विवेकानंद शुक्ल की वार्ता होगी, स्वस्थ जीवन का आधार यम नियम और संयम। खेती बाड़ी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 6:10 पर। इसमें आज अरहर की प्रजातियां और बुआई विषय पर डॉक्टर अंगद प्रसाद से बातचीत करेंगे विनय कुमार। लोकगीत आपको सुनाएंगे मदन मोहन। भेंट वार्ता होगी धान की रोपाई में उर्वरक प्रबंध, डॉक्टर एस के तोमर से भेंट करेंगे विनय कुमार। लोकधारा कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:45 पर। इसमें आज के कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। देसमार कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। इसमें अयोध्या प्रसाद की वार्ता होगी, सेहत का राज मोटे अनाज। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी लोकगीत 7:10 पर। 7:31 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का एक ही कलाकार। इसमें आज ही कलाकार होंगे के। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कहानीकार जयशंकर मिश्र की कहानी वृद्धाश्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा 8:15 पर, कलाकार होंगे हरिहरन। चर्चा का विषय है कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा 9:30 पर। फिल्म गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग संपूर्ण मार्कोस। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेब 330.03 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड 100.1 MHz पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ

थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
3: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
2: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
3: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं,
3: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं,
2: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
3: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
3: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, हम आपको याद दिला दें फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। गीत गाते गुनगुनाते सुबह 10:05 पर यह आकाशवाणी गोरखपुर है। 6:55 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

वाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियम

0: प्रत्येकं वित्तीयवर्षे पञ्चविंशत्युत्तरैकशतदिनानां सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीणभारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतनतन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीयवर्षस्य कृते ₹92,65,95,000 कोटिरूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पञ्चविंशत्युत्तरैकशतदिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य सङ्कल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20/26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावलिः 20/19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान

0: प्रधानमंत्री सानाए ताकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
4: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
3: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
4: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
5: आइए सुनते हैं देश का

0: अभी आप सुन रहे थे देश का गान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। UPTET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे UPTET 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश

0: कृत्य करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
3: वो लोग माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके,

0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत अमरोहा कानपुर अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
1: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

0: कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।

0: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
0: गीतकार
1: और संगीतकार
0: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
0: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
0: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

अभी आपने जिन फिल्मों की सुनी उनके नाम थे किस्मत, शिकायत, शराफत, पाकिजा, साहिबी भी और गुलाम और काला पानी। आवाजें थी आशा भोसले, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की।

0: इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म गीतों का जी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे ही समाचार होंगे।
1: वाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना।

0: और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीवीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298 रुपए 80 पैसे से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही

0: ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा।

0: अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है, एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया। Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ram Ji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ram Ji

0: begin their five-match 2020 International Series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street, starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President. Stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई ताइकीची भारत के तीन दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
3: वीबीजी रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। اس قانون میں بروقت شفاف اور جوابدہی پر مبنی اجرت کی ادائیگی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے. اس نئے قانون کے تحت یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی کو مقررہ وقت کے اندر اندر کام فراہم نہیں کیا گیا تو اسے بے روزگاری بھتہ دیا جائے گا. وکست بھارت جی رام جی قانون ایک جامع فریم ورک ہے جسے 2047

0: तक विकसित भारत के कौमी तसव्वुर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निजाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपये रोजाना की उजरत आर्जी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपये थी, जिसे अब वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपये रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं है, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
1: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुर जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अदा करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अदा करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगु के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदामात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगु के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मुहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफैन को इलाकाई और

0: जख्मी हो गए। यह हादसा बंदी कुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनू मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों, नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है, जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैन अलाक़वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनक़िद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आज़म।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपरहिट।

पत्थर की सनम अभी आपने इस फिल्म में मुकेश को सुना। गीतकार थे मजरू और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कैशम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म सफर से। आवाज़ है मुकेश की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जे।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के

0: गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

अभी आपने मुकेश को सुना, फिल्म का नाम था उपहार। इस गाने को लिखा था दक्षिण और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और भाई सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है आशा और गायक कलाकार किशोर कुमार।

0: ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही तो है वो।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
2: ऐ सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग, गीतकार मशरू सुल्तानपुरी और संगीतकार रवि।
3: ये जमाना कहे हम

0: तो बताओ हमको,
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: कैशम के आखिर में किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम है हम तुम और वो, वर्मा मलिक ने गीत को लिखा और संगीतकार कल्याण जे आनंद

अभी आपने किशोर कुमार को सुना, फिल्म का नाम था हम तुम और वो। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हम आपको याद दिला दें, 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने गुनगुनाते। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने वाले हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।

0: लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 9:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल, आलेख है संजय कुमार का।
2: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चक सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज

0: दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहाँ प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगर पालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्या ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान, ग्राम पंचायत रायक, नगला लच्छी, सैनपुर, अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्या ने यहां अविस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोला चौराहे स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मुड़ा, बाली माता मंदिर, दावजी महाराज मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा कार्य, गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर।

0: पीठ पर्वत स्थला तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर स्वर्ग आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर के इंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश का अंक।

0: देशगान आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से है। आइए सुनते हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। मकाला निगार हैं डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलाम शायर हैं असलम आदिल। आइए सुनते हैं।
4: हर रोज एक नया समा बंधता है, आवाज की इस महफिल में हर रोज एक नया समा बंधता है। बात पहुंचती है जो आप तक, वो दिल को छू जाती है। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों और जज्बातों के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, और कलाम शायर के तहत सुनिएगा जनाब असलम आदिल से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर नीलोफर हफीज से मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार।
5: वालिदैन की तवज्जो और रहनुमाई बच्चों की अखलाकी दुरुस्तगी, किरदार साजी और समाजी सलाहियतों के फरोग में हमेशा ही अहम रही है, लेकिन दौरे हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो चुकी हैं, और इसकी वजह ये है कि अब बच्चों की तालीमी और तफरीही ज़राए में बड़ी हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। कदीम रवायात की पासदारी या पाबंदी से अब हमारे बच्चों को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रह गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इन बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही बालिग और संजीदा कर दिया है। असर हाजिर की नज़ाकतों की बुनियाद पर ही शायद परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हम सभी देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में बच्चों को तालीम से दूर करने और उनके अखलाक व किरदार को मुतासिर करने वाली काफ़ी दाखली और खारजी मसरूफियात पैदा हो गई हैं। तहकीक से पता चलता है कि बच्चों की बेहतर कारकर्दगी और आला दर्जात तक उनकी रसाई वालदेन की तालीमी सरगर्मियों, दिलचस्पी और तआवुन से ही मुमकिन है। मगर अफसोस के दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के पेश नज़र और अपने बच्चों को अहद जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने और उनका मयार ज़िंदगी बुलंद करने की खातिर जहां एक तरफ माँ और बाप दोनों ही मुलाजिमत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से बेपरवाह होकर इन मासूम नौनिहालों को गैर तरबियत याफ्ता घरेलू मुलाजमीन के सुपुर्द कर देते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है। वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत से महरूम बच्चे अक्सर डरे सहमे और खौफजदा रहते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। नाकामी से दोचार होने के सबब बाज़ औक़ात न सिर्फ अपनी पूरी शख्सियत तबाह कर लेते हैं

बल्कि खुदकुशी जैसे खतरनाक इकदाम उठाने से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। इस किस्म की सदहा मिसालें हमें अपने आसपास देखने को मिल जाती हैं, जिनमें बच्चे छोटी छोटी बातों की ताब न लाकर अपनी जान दे देते हैं। हमेशा याद रखें कि वालदेन अपने बच्चों की पहली दरसगाह होते हैं और उनकी तालीम और तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। लिहाजा इस तालीम और तरबियत में की गई जरा सी लापरवाही या कोताही बाज़ औक़ात बड़े खौफनाक नतीज का पेशखीमा साबित होती है। आज हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मादी तरक्की हासिल कर लेने का नाम है और ये मादी तरक्की और कामयाबी हमें तालीम के जरिए हासिल हो सकती है। यही सबब है कि आज हर तालीमी इदारे में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने की एक दौड़ हो रही है। बच्चों को कॉम्पिटिटर बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और तरबियत को सिरे से नजरअंदाज किए जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। मौजूदा वक्त में बच्चों की तालीम और तरबियत सिर्फ स्कूल से जोड़ दी गई है। घरों में वालदेन का अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और तरबियती उसूलों की पाबंदी करने के सिलसिले में कोई खास एहतमाम नहीं किया जा रहा है। आज हम तालीम पर तो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन तरबियत के सिलसिले में गफलत का शिकार हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि तालीम इल्म तक पहुंचने का एक रास्ता है और हम लोग अपनी कमफहमी के सबब इस रास्ते को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं, जबकि हकीकी मंजिल तो इल्म है। और इस रास्ते को जो चीज़ रोशन या मुनव्वर करती है, इंसान को ठोकर लगने से महफूज रखती है, वो चीज़ तरबियत है। बज़ाहिर तरबियत नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम जिंदगी के सफर पर चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं, मायूस होने लगते हैं, तो इंसान की उंगली पकड़कर उसे दुरुस्त रास्ते पर जो चीज़ ले जाती है वही दरहकीकत तरबियत होती है, जिसकी तरफ से हम शऊरी और लाशऊरी दोनों एतबार से गफलत इख्तियार किए रहते हैं। बच्चे को एक अच्छा मजबूत और बाशऊर इंसान बनाने के लिए तालीम और तरबियत दोनों ज़रूरी हैं। कहते हैं वालिदैन और असातज़ा ये दोनों किरदार बच्चों की शख्सियत साजी और तालीमी सफर में बुनियादी अहमियत रखते हैं, क्योंकि वालदेन का रवैया और उनकी मोहब्बत बच्चों की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती है। हम में से हर वालदेन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा नेक, ईमानदार, काबिल एतबार, मेहनती, सेहतमंद और बाखलाक हो। वो जहाँ भी जाए अपनी खूबियों से, अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को अपना गिरविदा बना ले। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आपका बच्चा उन तमाम खूबियों से मुजयन हो जो आप उसमें देखने के ख्वाहिशमंद हैं? यकीनन मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें अपना मुहासबा करना होगा। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो जो खूबियाँ आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं उनकी एक मुकम्मल लिस्ट तैयार कीजिए और इस लिस्ट को दो खानों में तकसीम कर दीजिए। एक खाने में वो तमाम खूबियाँ लिख लीजिए जो आप अपने बच्चों में देखने के ख्वाहिशमंद हैं, और दूसरे खाने में आपने सिर्फ 10 में से नंबर देने हैं और ये देखना है कि वो खूबी आप में कितने फीसद पाई जाती है। मसलन आप अपने बच्चे के लिए ये चाहते हैं कि वो कभी झूठ ना बोले, तो आप अपना मुहासबा करें। ये सिफत आपके अंदर किस हद तक मौजूद है? क्या आप झूठ बोलते हैं? और इसी तरह जो भी खूबियाँ आप उसमें देखना चाहते हैं पहले इन तमाम को अपने ऊपर नाफिस कीजिए और देखिए कि आपका अपना कितना स्कोर है। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप इत्मीनान से रहिए, क्योंकि ये खूबियाँ खुद ब खुद आपके बच्चे में मुंतकिल हो जाएंगी। अलबत्ता अगर आपको ये लगे कि आप में ये आदत है कि आप कभी कभी झूठ बोल लेते हैं, तो आपको अपने बच्चे को सच्चा बनाने के लिए पहले खुद पर मेहनत करना पड़ेगी और अपनी इस झूठ बोलने की आदत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के आसपास जो माहौल होता है वही उनके मिजाज का हिस्सा बनता है। लिहाजा वो वालदेन जो अपने औलाद की जिस्मानी, दीनी, रूहानी बामकसद ज़िंदगी गुजारने और उनके शऊर की तरबियत करने के मुतमन्नी हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि पहले वो अपने आप को इन सिफात का हामिल बनाएं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि बच्चे नसीहतों और बातों से उतना नहीं सीखते जितना कि वो अपने बड़ों के रवैयों को देखकर सीखते हैं। अगर माँ बाप ही हक के रास्ते पर नहीं, उनको खुद ही मकसद ज़िंदगी का शऊर नहीं, तो वो हरगिज़ भी औलाद को ईमानदार, परहेजगार और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देने में कामयाब नहीं हो सकते। वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बुनियादी उसूलों के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। मसलन बच्चों की जिस

0: जिस्मानी और जहनी तरबियत का पहला उसूल यह है कि उनको अच्छी गिजा दी जाए और ऐसी गिजाओं से बचाया जाए जो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। बाहर के खानों की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। जंक फूड हमारे बच्चे आज बहुत खाते हैं। इस फूड में गजाइत की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, मोटापा, शुगर और दीगर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। खराब सेहत की वजह से उनकी तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर होती हैं। मगर अफसोस कि आजकल बच्चों की गजा के सिलसिले में वालदेन की तरफ से बड़ी गफलत इख्तियार की जा रही है और ये बे एहतियाती बाज़ोकात बच्चों में मुस्तकिल जिस्मानी कमजोरियों का सबब बन जाती है और उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। लिहाजा ज़रूरी है कि वालदेन एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं और अपने बच्चों के लिए सेहत बख्श गज़ा फराहम करें। दूसरी अहम चीज़ जो बच्चों की जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों पर असरअंदाज होती है वो अच्छी नींद है। सही और वक्त पर नींद न होने की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए वालदेन बिलखसूस माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की नींद की सही तरतीब बनाए और उस पर सख्ती के साथ अमल करें। नींद सही न होने की सूरत में भी बच्चों की जिस्मानी और जहनी नश्वोनुमा रुक जाती है और उनकी तालीम पर भी खराब असर पड़ता है। एक और बहुत अहम चीज़, वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम में गहरी दिलचस्पी लें। पढ़ाई के दौरान पेश आने वाले मसाइल को हल करने की कोशिश करें, खुद भी किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को भी अच्छी किताबें पढ़ने की तरगीब और तशवीक दिलाएं और पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल फराहम करें जहां हमारे बच्चे खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस कर सकें। उन्हें तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उन्हें ये भी समझाएं कि तालीम सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियों की जमा आवरी का नाम नहीं है बल्कि ज़िंदगी को बेहतर और सरबुलंद तरीके से जीने का एक बड़ा ज़रिया है। यानी अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने के फ़ायदेमंद तरीके सिखाएं, ऐसी महारतें और सलाहियतें उनमें परवान चढ़ाएं जो उनको उनकी अमली ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित हों। इसी के साथ साथ बच्चों की जज्बाती और नफ्सियाती तरबियत भी ज़रूरी है। वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाएं, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। इस ज़माने में वही कौम तरक्की कर सकती है जो इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे है। इसलिए ये हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हम इस बात को अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाएं कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के अपना रास्ता जो इस भीड़ से निकल गया। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल सिखाएं ताकि वो जदीद दुनिया के तकाजों के पेश नज़र अपने कामों को दुरुस्तगी के साथ अंजाम दे सकें। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी इंसान का मकसद कितना ही आला हो और उसमें काम करने का जज्बा कितनी ही शिद्दत से क्यों ना पाया जाता हो, लेकिन उस काम के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत है, अगर वो सलाहियतें और लियाकतें उसमें मौजूद ना हों तो फिर जज्बात या अजायम काम नहीं आते। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के अंदर वो सलाहियतें पैदा करें जो किसी भी मकसद के हुसूल के लिए ज़रूरी हैं। माँ और बाप के दरमियान का मजबूत तावुन और मुश्तरका कोशिशें ही बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे सकती हैं। इसलिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए और वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी औलाद को बेहतरीन और आला तरीन तालीम व तरबियत देने की कोशिश करना चाहिए।
1: बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, इस मौजू पर अभी आप मकाला समाप्त फरमा रहे थे। मकाला निगार थी डॉक्टर नीलोफर हफीज। और अब समाप्त फरमाइए जनाब असलम आदिल से उनका कलाम।
2: गजल का मतलब समाप्त फरमाए।

0: अभी आप जनाब असलम आदिल से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप मिश्रा की।
1: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, कुछ ही बोलों में आप सुनेंगे हमारा सुगम संगीत का प्रोग्राम।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: सुगम संगीत प्रोग्राम में आज ही फनकार स्वप्निल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार स्वप्निल।

0: सुगम संगीति प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे स्वप्निल को। यह आकाशवाणी गोरखपुर है, 10 बजे ही समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
2: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चा

0: संगीत नाटकों में बैरिस्टर सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम गाने गुनगुनाने। साथियों आइए शुरू करते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने गुनगुनाते। इस दिन का हमें भी इंतजार था और आपको भी इंतजार होगा क्योंकि ये आज का पहला कार्यक्रम है और आज के पहले कार्यक्रम में आपके रेडियो वाले दोस्त नवीन की उपस्थिति है। तो आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए हम सब मिलकर शुरू करते हैं आज का ये जश्न। जश्न है भाई क्योंकि एक शुरुआत हो रही है, एक बेहतरीन कार्यक्रम आप सबके बीच में पहुंच रहा है। चलिए फेसबुक खोलते हैं आपकी तरह हम भी, और आप भी खोल लीजिए। और छोटी सी गुजारिश आपसे है कि आप हमारे आकाशवाणी गोरखपुर के पेज को लाइक कीजिए और अपनी फरमाइश के गीत हम तक भेजिए। ये फरमाइश पहले मैं उठाऊं पुराना तालाब डुमराव से वलीवल्ला अंसारी साहब का संदेश है, साथ में अस्मा नाजंसारी और शबनम बानू। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साफने, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साफने। आप सब ने सुनना चाहा है 10 नंबरी फिल्म का गाना। गायिका हैं लता मंगेशकर, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

एक बात तो है कि आपका जो ये संदेश है ना, वो ऊर्जा से लबरेज कर रहा है। इतने सारे संदेश, थैंक यू सो मच हमारे प्रिय श्रोताओं, हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। चलिए अगला गाना लेते हैं, और ये है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार हैं कमाल अमरोही और संगीतकार गुलाम मोहम्मद। इसे सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुट्टू, और साथ में मैं अपना नाम भी जोड़ लेता हूँ, मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। आइए सुनते हैं।

एक छोटी सी बात बोलो आपकी मोहब्बत ने आज फिर दिल जीत लिया, आपकी मोहब्बत ने आज फिर दिल जीत लिया। हर दुआ हर मुस्कान ने हमें और अमीर कर दिया। साहब करना कुछ इतना सा है कि आप फेसबुक खोलिए, आकाशवाणी गोरखपुर के पेज पर जाइए, उसे लाइक कीजिए और गाने गुनगुनाते हुए अपनी पसंद के जो गाने हैं उसे लिख दीजिए, गाने के बोल, गाने का जो फिल्म है वो लिख दीजिए और फिर अपना नाम पता ठिकाना और हो जाइए शुरू। आज नवीन आपके साथ है सुनवाने के लिए आपकी पसंद के गाने। तो भाई अगला संदेश है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभिता सिल्लौड़ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, यज्ञेश घोड़के। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म कोरा कागज से किशोर कुमार साहब को। इस गाने को लिखा है एमजे हस्मत ने और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। बहुत अच्छा गाना है, आइए मिलकर सुनते हैं।

0: चंदन का एहसास।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: अगली फरमाइश है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। नाम है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, अल कबीर, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया की। गाने के बोल हैं कब के बिछड़े हुए, फिल्म है लावारिस, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, गीत अंजान और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आइए अब लेते हैं अगली फरमाइश और इसे भेजा है बन बखेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सर्वा आशा सर्वा नीरज नीलेश अंजलि रोशनी सर्वा और इन्होंने सुनना चाहा है लगान फिल्म का गाना उदित नारायण और साथियों की आवाज़ें जावेद अख्तर का गीत और संगीत ए आर रहमान का।

अगले गीत बरसात फिल्म से आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम शिवन। इस गाने को सुनना चाहते हैं आष्टी ज़िला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन और राम भाऊ तांदले। गोतरजोड़ा आष्टी ज़िला जालना मराठवाड़ा से दशरथ सांगुते और अनुष्का सांगुते।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: अगली फरमाइश रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, भाविका किटे और इनके घर परिवार के अन्य लोग। इंग्लिश फरका भागलपुर बिहार से विनोद कुमार यादव। आप सबने सुनना चाहा है नूरी फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीतकार जानिसर अख्तर और संगीतकार खय्याम।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी को फिल्म का नाम है शहनाई, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि। इस गाने को सुनना चाहे है भाटापार छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू ने।

भैया पीछे क्यों हैं? आप भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अपने पसंद के गाने को भेजिए। फिलहाल रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की फरमाइश मेरे पास आई हुई है। फिल्म है राजा जानी, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार अन बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगली फिल्म है छोटा भाई। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यायलाल और गायिका लता मंगेशकर। इस गाने को सुनना चाहते हैं माँ बल्लेश्वरी धाम साकरा सोमनी जिला

राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से जितेंद्र किशन। सुनीता रिसीवन, नीलकंठ चंद्रहास, वीरेंद्र संजीवन, त्रिलोक कुमार और रणजीत सिंह साहू।

इस गाने की फरमाइश आई है सफेदों सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और खन्ना परिवार के अन्य सदस्य। फिल्म है अपना देश का, एक है लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गीतकार अनबख्शी और संगीतकार आर टी बर्मन।

आज का ये सफ़र बड़ा ही आनंददायक रहा, बहुत मज़ा आया आप सबकी फरमाइशी गीतों को बजाकर। एक बात कहता हूँ, आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, अपनी पसंद के गानों को लिख भेजिए, हम यहाँ से सुनवाएंगे। बहुत सारे श्रोताओं की आज की फरमाइश थी लेकिन उसे हम नहीं सुनवा सकें, इसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी हर फरमाइश हमारे लिए कीमती है, वो फरमाइश यूं ही जाया नहीं होगी, अगले किसी कार्यक्रम में आपको सुनने को जरूर मिलेगा। दीजिए इजाजत अपने दोस्त नवीन को, नमस्कार। यह आकाशवाणी गोरखपुर है, 11 बजे हैं, अब समाचार होंगे।

और अब एफ एम रेनबो पर मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक 298.80 रुपये से बढ़ाकर 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। यूपीआई के माध्यम से पिछले माह 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 23% अधिक। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की मंजूरी दी। इससे रेलवे के डिजिटल संचार नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया। परीक्षा कल से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय शख्सियत विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने की संभावना। और अब खेलों में, फीफा विश्व कप में फ्रांस, नॉर्वे और मैक्सिको अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त आरजे रॉकिंग रश्मि। जी हाँ दोस्तों, वही अपना जाना पहचाना बॉलीवुड रील्स है आपके साथ में। और आज क्या होगा इसमें खास,
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं भोला यादव और साथी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: नफरत की आग ना समाज में।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग, CSU मुंबई से

0: संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202475 या 2288-6016 और STD कोड 022।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते गुनगुनाते
6: सुनिए सुबह 10:05 पर।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर।

0: IPM Gira से करें अपने सपने साकार। BTech Polytechnic MBA MCA BBA BCA B-Pharma M-Pharma और D-Pharma में admissions open। KIPM Gira Gorakhpur।
1: लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे भोला यादव और उनके साथी। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
2: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार,
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
3: गाते गाते गुनगुनाते
4: सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में आइए सबसे पहले सुनते हैं मुक्ति फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा एक गीत, स्वरबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने, गायक कलाकार हैं मुकेश।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गोमती के किनारे से। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है, गायक कलाकार हैं मनहर उदास।

कार्यक्रम का अगला गीत है मजदूर फिल्म से। सलमा आका की आवाज़ है, हसन कमाल के बोल, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश

0: हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
0: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: गीतांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नौकर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा है गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है।

किशोर कुमार की आवाज़ में एक और गीत सुनते हैं फिल्म एहसास से। इसे लिखा है रविंद्र पीपल ने, सुरों से सजाया है बप्पी लाहिरी ने।

एहसास फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के

0: फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी,
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी,
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है।
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ

0: आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
3: आह, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
2: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
3: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
4: यस मैम।
3: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
3: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये

0: चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने

0: मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
0: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
0: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला। फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी कोई
0: इस समय
2: है?
0: कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है अनाज मांगने वाले, करो।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी,
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों,

0: ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
1: लेकिन मुखिया जी,
0: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
1: जी मगर
0: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
2: मुखिया जी,
0: अब क्या है?
2: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
0: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
0: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
0: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
0: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
3: आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
4: उपभोक्ताओं तक

0: भेजने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: कार्यक्रम गीत सुहाने का आइए सबसे पहले गीत सुनते हैं गंगा जमुना फिल्म से। नौशाद के संगीत से सजा ये गीत है। बोल शकील बदायूनी के हैं, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।
6: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा

तीसरी कसम इस फिल्म से आइए आप सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है, आवाज दे रही हैं लता मंगेशकर।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर,
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
5: गीत सुहाने कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए संघर्ष फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में नौशाद का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म लोफर से। आनंद बख्शी की इस रचना को स्वरबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ है आशा भोसले की।

0: लोफर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं हरिहरन। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं हरी हरन को। सुनते हैं इसरार अंसारी का लिखा कलाम, लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मजहर इनाम का लिखा कलाम, ये तजुर्बा भी करूं ये भी गम उठाऊं मैं, ये तजुर्बा भी करूं ये भी गम उठाऊं मैं कि खुद को याद रखूं उसको भूल जाऊं मैं।

0: इसी नगमे के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे हरिहरन। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: केंद्र है, दिन के 1:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है।

0: चिकित्सा निदेशक ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर मोहम्मद असगर अली खान साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सेहत की बातें कार्यक्रम में आप आज श्रोताओं को लाभान्वित करेंगे कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी स्वस्थ रहना अपनी प्राथमिक आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपका भी कभी आम आदमी में वो गिनती हुआ होता होगा, तो आप कैसे मतलब उस चीज़ को रियलाइज करते हुए आज के श्रोताओं को या जनमानस को संदेश देना चाहेंगे कि क्या मतलब चीज़ें अपनाई जाए, क्या छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे भरमार है चीज़ों का, मार्केट हावी है लोगों पे। तो आप थोड़ा श्रोताओं को रुझान बता दीजिए कि कैसा रहा आपका बचपन, आपका जीवन, आपने क्या छोड़ा, क्या पाया और आज यहाँ पे उपस्थित है।
1: जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सासाराम एक छोटी सा एक शहर है जहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। वो 10th तक मैंने वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद फिर पटना में, पटना साइंस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया प्लस टू करने के लिए। फिर वहाँ पढ़ाई लिखाई की, फिर वहाँ से फिर कंपटीशन की तैयारी की गई, फिर वहाँ मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई किया। फिर वहीं पटना में ही पटना मेडिकल कॉलेज में हमारा MBBS में एडमिशन हुआ। वहीं से हमने अपनी इंटर्नशिप करी। फिर उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वहीं से एग्ज़ाम दिया मेरा, उसी कॉलेज में जो पटना मेडिकल कॉलेज है, वहीं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में हमारा MS कोर्स में एडमिशन हो गया। और वहीं से हमने 3 साल का MS सर्जरी, जनरल सर्जरी में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने रेलवे सर्विसेज का UPSC के थ्रू हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया और पूर्वोत्तर रेलवे में हमारा एज ए असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के पद पर बहाली हुई। मैंने 1996 में वो ज्वाइन किया और कई वर्षों तक ऐसे सर्जन का और एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहने के बाद हमारी पोस्टिंग पिछले 2 साल पहले यहाँ गोरखपुर में मेडिकल विभाग द्वारा चिकित्सा निदेशक के पद पर ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हो गई और मैं वहाँ अभी तक कार्यरत हूँ।
0: रेलवे सर एक तरीके से लाइफ लाइन होती है, लेकिन रेलवे के साथ जब हॉस्पिटल जुड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि लाइफ सेविंग भी है। तो सर, आप जब अस्पताल प्रबंधन के शीर्ष पद पे हैं ललित नारायण मिश्र चिकित्सालय में, तो वहाँ पे जब किसी मरीज को भर्ती होना होता है तो क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या विशेष वहाँ पे इलाज होता है जो आप पाते हैं कि इसमें हम लोग श्रेष्ठ हैं?
1: ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय 366 बेड का हॉस्पिटल है जो बहुत ही पुराना है, 1930 से स्थापित है। और यहाँ जो है सारी स्पेशलिटी के चिकित्सक, करीब करीब जो मेजर स्पेशलिटी है सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, आई और पीडियाट्रिक्स, तो ये सारे विभाग के चिकित्सक हमारे मौजूद हैं। और जो भी हमारे रेलवे लाभार्थी हैं, जो इम्प्लॉय हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके जो भी उसमें इनरोल्ड हैं, उनकी फैमिली, वो सारे लोगों को हम मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा, कैशलेस। और जो सुविधाएं हम लोग के यहाँ मौजूद नहीं हैं, उसके लिए अगर हम रेफ़र करते हैं उनको कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में, जो इंडिया के सबसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब हमारे इम्पैनल्ड हैं और हम उनको कैशलेस ट्रीटमेंट वहाँ भेज के भी करवाते हैं। उनको आने जाने के लिए पास भी देते हैं ट्रैवल के लिए, और वहाँ जो भी में उनका खर्च होता है वो सब रेल वाहन करती है और अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर उसमें है, कोई कैप नहीं है कि इतने अमाउंट तक ही उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। और हर तरह के मरीजों को, कैंसर के हों या अन्य बीमारियों के हैं, कार्डियोलॉजी के हैं, हार्ट के हैं, और हर तरह का हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट सभी को।
0: आम आदमी जब जो रेलवे में नहीं एम्प्लॉय है, उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था है, क्या प्रावधान है,
1: हाँ
0: उसमें भर्ती होने की क्या शर्तें हैं?
1: जी, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो कि रेलवे से संबंधित नहीं है, आम आदमी है, वो भी वहाँ आके चिकित्सा ले सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है। उसमें जो नॉमिनल फीसेस है, जो CGHS दर पर सरकार ने जो निर्धारित की है, उसका पेमेंट करना होता है। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उसमें रजिस्टर्ड अगर वो हैं, तो उनको कैशलेस सुविधा प्रदान की है।
0: डॉक्टर साहब, हम लोग चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो कोई आपके पसंद का चिकित्सा, चूंकि काफी कठिन क्षेत्र है और काफी रिगरस है, तो आप बीच बीच में अगर गाने सुनते हो तो कोई एक गाना श्रोताओं के पसंद का आप बता दें जिसको सुनवाया जा सके।
1: एक सॉन्ग है जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है और बहुत ही आपको स्ट्रेस फ्री रखने का मैसेज देता है।

0: डॉक्टर साहब, पुनः एक बार बातचीत के लिए हम लोग उपस्थित हैं। तो अब खान पान पे आते
1: जी
0: हैं कि जनरल खान पान क्या होना चाहिए, क्योंकि केमिकल युग है, प्लास्टिक युग है, प्रधानता है। सरकार तमाम चैनल से कह रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आया जाए। तो खान पान में क्या छोड़ा जाए, क्या अपनाया जाए? आप चूंकि वरिष्ठ चिकित्सक हैं तो
1: जी
0: बताएं थोड़ा श्रोताओं को।
1: खान पान में ये ध्यान रहे कि जो नॉर्मल खाना पीना जो होता है, जैसे घर का खाना, जैसे दाल रोटी सब्जी चावल सलाद फल, ये सब चीज़ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करें। जैसे आज के बच्चे जो हैं, आज की जनरेशन के लोग, फास्ट फूड उनको अट्रैक्ट करता है, उसके एडवर्टीजमेंट, उसकी डिलीवरी कितना जल्दी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें किसी पर्टिकुलर एक फूड के बारे में नहीं। तो वो सब चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि एज ए मेन फूड नहीं बना के कभी कदार ओकेजनल उसका सेवन किया जाए। और उसको नॉर्मल कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स लें, हरी सब्जियां खाएं, चावल दाल सब्जी जो घर में बनते हैं खाने उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। और ऑयल का जो इस्तेमाल है, जो वनस्पति है, वो उसको मिनिमम हम लोग इस्तेमाल करें। और जीवन शैली पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जैसे हम योगा करते हैं, वॉक करते हैं सुबह शाम, कुछ व्यायाम कर लेते हैं सुबह में उठ के, तो उससे हमारा हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहता है, सारा बॉडी का सर्कुलेशन और स्ट्रेस फ्री रहने

0: में हमको मदद करता है, और एक आपकी लाइफ रूटीन हो जाती है, एक नियमित एक होता है कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे व्यायाम करना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे लौट के आना है, फिर वो करना है। तो एक रूटीन लाइफ की तरफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ सेडेंटरी वर्क हो, सिर्फ बैठे रहें और काम करते रहें, तो उससे हमारा जो है एनर्जी जो है प्रिजर्व रहती है, फैट में फिर बाद में कन्वर्ट होकर हमारी ओबेसिटी होती है, वेट बढ़ता है। तो फिजिकल एक्टिविटी होने से ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। जैसे साइकिलिंग ही कर रहे हैं हम, वॉक कर रहे हैं, कोई जिम में कोई जा रहा है, तो किसी ना किसी फॉर्म में उसको अपने जीवन शैली में उसको अपनाना है और उसको कंटिन्यूअस उसको फॉलो करना चाहिए हर एज ग्रुप में।
1: डॉक्टर साहब, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और भारत की भी आबादी साथ साथ में बहुत पहले से विस्तारित थी, अब और बढ़ रही है समय के साथ। अब चूंकि हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं, यहाँ पे जन दबाव ज्यादा है, तो इसमें महिलाओं को अगर बीमारी के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा संभावना रहती है कि उनको पकड़ ले, क्योंकि उनमें ऐसा प्राकृतिक कुछ वो चीजें होती हैं जिससे महिलाएं ज्यादा मतलब बीमार होने की संभावना रहती है। जब आप आधी आबादी या महिला की बात करते हैं, तो आप रेलवे में भी चूंकि महिला होंगी, तो किन किन रोगों पे अपने को ध्यान देना है ताकि हो ही ना, या समय से पूर्व जानकारी हो जाए, डॉक्टर के पास चले जाए, क्या बताएंगे?
0: जी, उसमें महिलाओं को जो बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है कि उन लोगों को मर्द के मुकाबले जो है ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, और उनको ज़्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि महिलाएं पूरा घर का काम देखना, बच्चों को देखना, फिर समाज के जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना, फिर ऑफिस पे भी काम करना, तो वो अपने को निग्लेक्ट कर देती हैं, अपने तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जागरूकता होनी चाहिए, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि समय समय पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप कराइए। हम लोग भी अस्पताल में रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं महिलाओं के लिए, स्पेशली खासकर जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसका एक रूटीन जांच जो है हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं कि अर्ली स्टेज में कोई भी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका इलाज संभव है और पूरी तरह से उसको क्योर किया जा सकता है। जैसे महिलाओं में खून की बहुत कमी होती है, एनीमिया होता है, वो अपने परिवार का तो ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पाती है, ठीक से खान पान उनका नहीं हो पाता है, तो उनको एनीमिया हो जाती है जिससे उनके शरीर में कमजोरी होती है। बहुत सी उनको अपनी जो कुछ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लड लॉस वगैरह ज्यादा होता है, तो वो उसको इग्नोर कर देती हैं ये सोच के कि चलो मेरा क्या हम ठीक हो जाएंगे, बाद में दिखा लेंगे। लेकिन इस चीज से उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है कि वो जब ठीक रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी परिवार स्वस्थ रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, खून की कमी की आप बात कर रहे हैं, खून की कमी का एकमात्र वजह क्या खान पान ही हो सकता है, कोई और बीमारी भी हो सकती
0: नहीं?
1: है?
0: उसमें एक तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, जो खान पान में आप प्रॉपर आयरन आप नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है जिस्म के किसी भी हिस्से में, जैसे कि महिलाओं में खासतौर से प्रतिमा जो जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, अगर वो इररेगुलर है और ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इनटेक नॉर्मल भी किए हुए और लॉस ज्यादा हो रहा है तो उसमें एनीमिया होने का शक ज्यादा होता है। और दूसरा होता है वर्म्स इन्फेस्टेशन, जैसे कि बहुत से वर्म्स होते हैं बॉडी में जो खान पान के साथ चले आते हैं, जो अपने आंतों में उपलते हैं और वो खून को आपके अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस वजह से भी वो डिफिशियंसी होती है। तो उनका तो ट्रीटमेंट हम लोग रेगुलरली एक की दवाएं हम लोग देते हैं, टैबलेट्स होती है, उसको रात में दे दिया जाता है, तो उससे उसको क्योर किया जा सकता है। तो एक रेगुलर चेकअप होने से और उनकी बीमारी का अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने से हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसकी अलग से दवाएं भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनके महिलाओं के लिए जिसने भारत सरकार ने आयरन जो टैबलेट्स है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोविजन रखा हुआ है उसके लिए।
1: बात महिलाओं की हो रही है डॉक्टर साहब, और भाव पक्ष ना हो यानी गीत संगीत ना हो तो अधूरा सा लगेगा, कोई संगीत जो आपको विशेष जिससे लगा हो श्रोताओं को सुनाया जा सके?
0: आप अपनी पसंद से एक महिलाओं से संबंधित कोई एक अच्छा सा

0: डॉक्टर साहब, बातचीत के क्रम में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बढ़ी है समाज में, आधुनिकता आई है, सब जगह ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मतलब पूरा ग्लोब एकीकरण होता जा रहा है, तो इससे चिकित्सा क्षेत्र भी अधूरा नहीं है। महंगाई भी उसी तरीके से है, हर जगह ऐसा लग रहा है कि सेम ही रेट होता जा रहा है, क्या अमीर क्या गरीब। तो बात करें कि बीमार ही ना हो, ऐसा कोई दवा है आपके पास, पेनिसिया जो दिया जाए?
1: नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं होती जिससे बीमार नहीं पड़े आदमी, लेकिन हाँ, हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि बीमारी से बचा कैसे जाता है, वो हमको पता है कि हम कौन कौन सी बीमारी से बच सकते हैं। तो उसके लिए वही है कि अपना सेहत का ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, अच्छा खान पान रखिए, तो हम लोग और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। और जो हर मैक्सिमम जो आजकल एडवांसमेंट इतना हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट का कि हर बीमारी का इलाज है, और वो ऑलमोस्ट 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन

0: मैक्सिमम जो बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसमें हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं और अर्ली स्टेज में उसको हम क्योर कर सकते हैं। और कोई बीमारी ऐसी है जो 100% क्योरेबल नहीं है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए अगर हम खान पान पर कंट्रोल करेंगे, दवाएँ समय पर खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत हद तक अपने नियंत्रण में रहेगी। जो 70% मरीज़ के हाथ में ही होता है उसको नियंत्रण करना इस सब तरीके से, बाकी 30% जो मेडिसिन होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो वो बहुत सी चीज़ें हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दवा नहीं है कि जिसको खा लेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी ऐसा।
1: सर, गूगल के आने के बाद या सोशल मीडिया के आने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। लोग डॉक्टर से मिलने से बचने लगे हैं और उनको लगता है कि कोरोना के बाद से, विशेषकर जहां पे ये सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया गया, तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर हिस्से में जब बीमार पड़ रहे हैं या संभावना लग रही है तो खुद से दवा ले ले रहे हैं। ये ट्रेंड समाज के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है या घातक है, क्या बताएंगे?
0: ये आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ये अच्छी चीज़ है कि गूगल में आप सर्च करके देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी है, कैसे होती है, कैसा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट लेने के पहले आप ज़रूर अपने चिकित्सक, जो भी नज़दीकी चिकित्सक हैं, उनसे एक बार संपर्क करें, उनको बताएं क्या है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लें। उसको देख के और उस पर बताए गए दवाओं को वो लेना घातक भी हो सकता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सूट करे या यूनिफॉर्मली। कोई दवाएँ ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए सही होती, दूसरे के लिए वो सही नहीं होती हैं। तो ये जो है, इसका फैसला आप चिकित्सक पर छोड़ें। चिकित्सक को अपनी परेशानी बताएं, उनसे सलाह लें, उनके सलाह लेने के उपरांत ही दवाओं का सेवन करें। डायरेक्टली उस पर गूगल पर देख के करना वो घातक हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कोई गीत संगीत जो आप सुनवाना चाहें, कोई पसंद हो तो बता दीजिए।
0: श्रोताओं की पसंद से, जो उनकी पसंद हो उस पर एक संगीत, अच्छा सा गीत बनवा सुना दें।
1: डॉक्टर साहब, फिर बातचीत के क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूंकि प्रारंभ से ही चिकित्सक की जरूरत रही, जब से सभ्यता का उदय हुआ है हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आदिम समाज में भी चिकित्सक हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, फिर हमारा चिकित्सा या चिकित्सा व्यवस्था धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, अब तो बहुत आगे आ गए हैं। तो खास करके समाज में एक चीज हम मॉनिटर करते हैं कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो रिकॉग्निशन तो बहुत अच्छा है, या पुलिस FIR होती है तो उसी के आधार पर दर्ज होती है, लेकिन जब दवाओं के सेवन के बारे में बात होती है तो लोग ये थोड़ा सा उससे बचना चाहते हैं, चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दवा। तो आप क्या सुझाव देंगे कि ये दवा लेना कितना समाज के लिए बेहतर है?
0: जो दवाएं हॉस्पिटल से मिलती हैं,
1: हॉस्पिटल से मिलती हैं?
0: नहीं, हॉस्पिटल में जो दवाएं सप्लाई होती हैं उनका तो पहले चयन जो है, पूरा जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, उनके द्वारा ही उनसे क्रय किया जाता है। और क्रय करते समय उनसे उसकी लैब रिपोर्ट, हर दवाओं का वहां से ड्रग एनालिसिस रिपोर्ट के साथ दवाएं आती, वो भी भारत सरकार द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। और जब वो सही होती है तभी उसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको हम लोग वो करते हैं, और वो बिल्कुल 100% सेफ होती है, उसमें कोई ऐसी शक करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर तब पर भी अगर किसी को कोई दवा सूट नहीं कर रही है या उनकी एफिकेसीज पर शक होता है तो हम लोग पुनः उसको वहां लेबोरेटरी में भेज के उसका एनालिसिस करवा के रिपोर्ट मंगवाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में मैक्सिमम वो सही निकलती है। तो इसीलिए उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए और उसको सेवन हम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि चिकित्सा व्यवस्था बहुत महंगी है और भारत सरकार ने ये समझा और जन आरोग्य चिकित्सालय की स्थापना की, पे दवाएं बहुत मामूली रेट में मिलती हैं या कम रेट में मिलती हैं, उसको जेनरिक दवाएं कहते हैं, ये जेनरिक दवाएं कितनी कारगर होती हैं, थोड़ा सा अगर श्रोताओं को भरोसा दे पाए।
0: जनरल जो कंसेप्ट है लोगों के बीच में कि जो दवाएं महंगी होती हैं वो अच्छी होती हैं, जो सस्ती होती है वो उतनी अच्छी फिकेसी उसकी नहीं होती, उतनी अच्छी काम नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार ने जो जन औषधि और कई आउटलेट्स इसलिए खोले हैं कि वही दवा जो आपको ब्रांडेड नाम से आती है, अन्य कंपनियां आती हैं, और वही सेम कंपोजिशन की दवाएं जो जन औषधि में मिलती हैं लगभग 1/4 प्राइस पर अवेलेबल होती हैं, और वो बिल्कुल सेफ हैं और पूरी तरह से इफेक्टिव हैं और उसका हम सेवन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें सीधे द मिनिमम रेट पर गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है आम आदमी को, कि जो कि उनके बजट के अंदर वो आ सके और वो उसका सेवन कर सके। और जो ब्रांडेड कंपनीज होती है उनकी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसमें बहुत वो होते हैं, तो उस वजह से भी उनके रेट शायद हाई रहते हों, लेकिन हमको उसमें जेनरिक दवा लेने में किसी तरह की कोई शक नहीं करना चाहिए और वो पूरी तरह से सेफ हैं और उपयोग में ला सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड जो है काम करता है, और आयुष्मान

0: कार्ड होने से कितना लाभ आम आदमी को मिलता है?
1: नहीं, आयुष्मान कार्ड होने से बहुत लाभ है। उसमें हमारे चिकित्सालय भी उसके लिए रजिस्टर्ड है, और जो लोग ऑप्ट करते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम रेलवे चिकित्सालय में इलाज लेना चाहते हैं, तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको, और वो उसमें आम आदमी के लिए बहुत है। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट उसमें फ्री है, और बहुत बड़ी सुविधा है गरीब में लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, या और भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इसीलिए लागू किया है कि सब आदमी को अच्छे से अच्छी सुविधा मुफ्त मिल सके, और हम लोग पूरा उसका पालन कर रहे हैं, और सभी लोगों को जिनके पास नहीं है उनको भी बनवा लेना चाहिए कि कभी भी ये उनको जरूरत पड़ सकती है। जो उसके एलिजिबल जो भी जनता है वो बिल्कुल उसका उपयोग भी करना चाहिए और उसको बनवा लेना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से चीजों को बताया आपने, काफी कुछ चर्चा हुई, लाभदायक भी रही। और चलते चलते अपने पसंद का कोई एक गीत, जाहिर सी बात है कि सुनने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन कोई ऐसा दौर नहीं रहा होगा बचपन का दौर जब रेडियो आपने सुना ना हो, तो कोई उस समय की यादें कुछ हो तो बताइए।
1: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को सुनवाते हुए विदा लेते हैं, धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक यू।
2: चल

0: कार्यक्रम सेहत की बातें में अभी आप सुन रहे थे ललित नारायण मिश्र, रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर गोरखपुर के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर मोहम्मद असगर अली खान से मनीष द्विवेदी की बातचीत। विषय था रेल अस्पताल गोरखपुर तथा हमारा स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ।
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज सुनिए डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से एक वार्ता। विषय है पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग।
6: जैसा कि आप पशुपालक भाई सभी लोग जानते हैं कि ये बारिश के मौसम आते ही

बहुत सारे रोग बीमारियां आपके पशुओं को अपने कुचक्र में घेर लेती हैं। इसका मुख्य कारण होता है बरसात में बहुत नमी हो जाती है और आसपास नमी की मात्रा इस हद तक होती है, साथ ही तापक्रम इतना अधिक होता है जिसकी वजह से जितने रोगकारक जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ है, चाहे रोग के अन्य कारण हैं, ये सारे जीवाणुओं को अनुकूल माहौल मिल जाता है अपने रोग को पैदा करने के लिए। और दूसरी दिक्कत की बात ये रहती है कि आप देखते होंगे कि जब हमारे पशु गर्मी में भयंकर गर्मी का जूझते हुए आते हैं और आने के बाद आप देखते हैं उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है, जिससे उनकी रोग से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे लड़ने की वो पशुओं में काफ़ी कम हो जाती है और इधर रोगकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे संक्रामक रोग लगने की डर हो जाते हैं। खास तौर से बरसात में जो बीमारियां फैलती हैं उसमें आप देखते होंगे उसमें गलाघोटू, लंगड़ी और सबसे ज़्यादा तो खुरपका मुँहपका रोग है। इसका प्रकोप तो अक्सर बरसात में भी देखा जाता है और आप देखते होंगे जब हमारे शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में भी इस बीमारी का प्रकोप देखा जाता है। और चूंकि यह संक्रामक है, ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है और ये बड़ी संख्या में एक ही बार में पूरे गांव को भी अपने चपेट में ले लेता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खुरपका मुँहपका बीमारी होती कैसे है। तो इसका जो मुख्य कारण है एक विषाणु है, इन विषाणु के द्वारा से ये खुरपका मुँहपका बीमारी आपके पशुओं को होती है। अगर इसका हम सरसफाई और अच्छे तरीके से रखते हैं, नमी नहीं रहने देते हैं, तो जब बीमारी फैलती है और थोड़ा सा सावधानी हम बरतते रहते हैं तो आपके पशुओं को ये प्रभावित नहीं करती। लेकिन चूंकि वायरल होने के नाते, विषाणु इसका कारण होने के नाते, थोड़ी भी लापरवाही के वजह से ये आपके पूरे पशुओं को या पशु के झुंड को ही चपेट में ले लेती है। अब इसके लक्षणों पे हम आपको बताएं कि इनके लक्षण क्या हैं, जिससे आप जान सकें कि आपके पशु को खुरपका मुँहपका बीमारी है। तो इसके जो मुख्य लक्षण हैं, सबसे पहले तो पशु आपको असामान्य दिखाई देगा, खाना नहीं खाएगा, मुंह से थोड़ा आपको लार दिखाई दे कि उसके मुंह से लार निकल रहा है, तो इतने में संदेह हो जाना चाहिए कि आपका पशु अस्वस्थ है, कि नहीं किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी दशा में जब आप उसकी खुर का निरीक्षण करेंगे और मुंह का निरीक्षण करेंगे तो खुर पे भी आपको छोटे छोटे छाले दिखाई देंगे या उसमें आप देखेंगे कि हल्का हल्का कभी कभी छालों से रक्त बहता हुआ भी दिखाई देता है। अब कभी मुंह खोल के अगर आप देखें तो मुंह में उसके काफ़ी छाले आपको दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा प्रकोप अधिक होता है तो ये छाले बाहर तक जबड़ों पे भी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से मुंह और खुर पे छाले पड़ना इसका मुख्य लक्षण होता है। साथ ही जब ये बीमारी होती है तो उस समय पशु को बुखार भी होता है, पशु चारा दाना एकदम छोड़ देता है, वो चारा दाना खाने में अपने को असमर्थ पाता है क्योंकि चूंकि मुंह में छाले होते हैं जिसके वजह से वो नहीं खा पाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये छाले फोड़ा का रूप ले लेते हैं, घाव का रूप ले लेते हैं, खुर के भी छाले जो होते हैं वो घाव का रूप ले लेते हैं। तो ऐसी दशा में आपको निरंतर उसकी निगरानी करती रहनी है और साथ ही साथ ये आपको देखना है कि उसको ऐसे बचाएं कि कोई दूसरा बीमारी जो है पशु को न लगने पाए, क्योंकि खुरपका मुँहपका ऐसी बीमारी इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप इसको सावधानी से पशु को रखे रहते हैं तो 6 से 7 दिन 8 दिन बाद अपने आप पशु ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी दूसरी बीमारी का इसमें संक्रमण, खास तौर से निमोनिया का या अन्य बीमारियों का, जैसे गलाघोटू का अगर प्रकोप हो रहा है आपके गांव में, तो ऐसी बीमारियों का अगर उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, लंगड़ी का जुड़ाव हो जाता है, तो ऐसी दशा में यह बीमारी

0: काफी आपके पशु के लिए घातक हो जाती है। तो अब इसके लिए बचाव की जब हम बात करते हैं या चिकित्सा की बात करते हैं, तो हमने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बस सावधानी। तो सावधानी में हमको क्या करना है ये आप समझ लें। सबसे पहले तो आप अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक को बुला करके आप पशु को एक बार दिखला दें और उनके आवश्यक निर्देशन में जो भी सलाह दिया जाता है उस हिसाब से आप पशुओं का उपचार करें। और अपने स्तर से कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप नीम की पत्ती आधा केजी ले लीजिए, एक लीटर पानी लीजिए, इसको खूब खौलाइए। जब पानी 300 से 400 ml बचे तो इस पानी को ठंडा होने दीजिए। इसमें एक चम्मच सरसों का तेल, एक चम्मच पीसी हल्दी मिला करके इससे आप मुंह के छालों की धुलाई कर सकते हैं, और जो खुर पे छाले हैं इनकी भी धुलाई आप इससे कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा आप फिटकरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी डाल के उसका एक घोल बना लीजिए, उससे मुंह के छालों की धुलाई कर सकते हैं। और फिनाइल आप ले सकते हैं, फिनाइल सॉल्यूशन उसका आप लगभग 5% का बना लीजिए और उस घोल से पूरे फर्श की सफाई करते हुए खुर को भी आप धुल सकते हैं। साथ ही बहुत सारी औषधियां इस तरह की स्प्रे के रूप में आई हैं, जहां पे छालों पे अगर आपकी दवाएं वैसे नहीं पहुंच पाती हैं तो उनका स्प्रे को प्रयोग करते हुए आप उस छालों तक आप उसका दवा का असर पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो छाले जल्दी से जल्दी सूख जाएं, फोड़ा का रूप न लें जिससे कि उसमें मवाद बनने लगता है, कीड़े पड़ने लगते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती है। दूसरा, एक आप पेंट बना सकते हैं, जैसे उसमें आप लगभग 10 ग्राम बोरिक एसिड ले लीजिए और लगभग उसका 7 से 8 गुना आप ग्लिसरीन ले लीजिए। ग्लिसरीन आपको जो भी दवा के विक्रेता हैं उनके यहाँ से आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पे भी ग्लिसरीन मिल जाता है शुद्ध। तो इसमें आप 10 ग्राम बोरिक एसिड डाल करके और एक पेस्ट बना करके मुंह के छालों में, अगर आपको ये पशु इसको अनलाइक करता है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर आप मुंह में लगाते हैं तो ये छाले जल्दी से जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरह से इन उपचारों के द्वारा आप आराम पशुओं को पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ नियंत्रण के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। आप पशु को गर्मी में अप्रैल मई तक टीका जरूर खुरपका मुहपका का लगा दें, और ये वर्ष में 2 बार टीके लगते हैं। 1 नवंबर में आपको फिर टीका लगाना पड़ता है, क्योंकि 6 माह के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस तरह से इन बताए हुए उपायों से यदि आप अपने पशुओं का रखरखाव करते हैं तो इस बीमारी से आप पशुओं को काफ़ी अच्छे तरीके से, बीमारी का फैलाव होते हुए भी अपने पशुओं को अच्छे तरीके से रख सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से वार्ता, पशुओं का खुरपका मुहपका रोग। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स पर, साथ ही FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपए होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा

0: कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कर

0: जाता रहा है,
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। FM बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपनी सायंकालीन प्रसारण सभा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और

0: अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राठी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
1: जी अवश्य।
0: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
1: जी मेरा जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
0: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
1: जी,
0: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
1: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
0: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
1: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
0: जी,
1: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
0: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
0: अच्छा।
1: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
0: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
1: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
0: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं।
1: जी,
0: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस,
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां।

0: पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं।
1: जी,
0: तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश,
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था।
0: जी,
1: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: जी।
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है।
0: जी, तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई।
0: जी।
1: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया।
0: जी, यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
1: जी,
0: मिला।
1: जी।
0: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
0: क्या बात?
1: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है। यह सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो, जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग्य जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षण में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का, जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने हैं उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो है वो अंधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे,

0: इसमें ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग्य साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी,
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी,
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे, उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: जी, और पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है, और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी,
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है, तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: जी
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए।

0: हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में। हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग्य की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
1: जी,
0: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उसे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग्य हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग्य चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग्य के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी,
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग्य लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
1: जी,
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
1: जी,
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं
0: पाया।
1: जी,
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें। वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं। थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे

0: संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी जी, यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप तो जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है,
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
1: आई सुनते।

0: भी साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग्य, मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए।

0: जो है, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि याजावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता
1: नहीं।
0: है, और याजावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आईं और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन
1: याजावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
1: जी।
0: आपकी यायावरी है, इसमें एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
1: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
0: जी।
1: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
0: जी,
1: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
0: जी।
1: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
0: जी।
1: जी,
0: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
1: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं, आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
0: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
1: जी जी जी जी
0: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
1: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है,

0: कैमरा अलाउड है,
1: हम्म,
0: वहां पर लोग लेके जाते हैं 1 मिनट 2 मिनट के, उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए।
1: जी
0: दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध

0: श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत हिंदी समाचारों से, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बोल रहे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
3: नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में, और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। दोस्तों, हमें हमेशा अपने मन को मजबूत बनाना आना चाहिए, ताकि मुश्किल के समय में हम आसानी से उनका हल ढूंढ सकें और अपना संयम ना खोएं। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा आधुनिक मेल है जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का उपयोग करके मानव जीवन को बेहतर बनाने वाले नए प्रोडक्ट्स और दवाइयां बनाता है। आज के समय में इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। इसमें कुछ मुख्य करियर विकल्प में रिसर्च साइंटिस्ट आते हैं, जिसमें लैब में नई दवाओं, टीकों और मेडिकल प्रोडक्ट्स की खोज करना शामिल होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट के तहत कंप्यूटर और डेटा की मदद से बायोलॉजिकल डेटा को समझा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर को ये तय करना होता है कि बने हुए प्रोडक्ट्स सुरक्षित और सरकारी नियमों के अनुसार हों। बायोमेडिकल इंजीनियर मेडिकल क्षेत्र के लिए मशीनों और उपकरणों का डिज़ाइन तैयार करते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिस्ट फसलों को बीमारियों से बचाने और उनकी पैदावार को बढ़ाने पर काम करते हैं। बात करें अगर हम रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों की, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिसमें दवाई और वैक्सीन बनाने वाले ब्रांड्स आते हैं, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स, जिसमें बीमारियों की जांच करने वाली एडवांस लैब्स आती हैं, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और पैकेज्ड फूड और इन्वायरमेंटल फर्म्स, जो प्रदूषण को कम करने और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने वाली संस्थाएँ शामिल होती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें योग्यता की, तो ये ज़रूरी है कि छात्र के 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय हो और ग्रेजुएशन बीएससी या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी हो। बेहतर पोस्ट और सैलरी के लिए एमएससी, एमटेक या पीएचडी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर चलिए आइए कार्यक्रम में हम उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

जागरूक करना है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जो जीवन का आधार है। घने जंगल बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे सही समय पर अच्छी बारिश होती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी बहने से बच जाती है। जंगल अनगिनत पशु पक्षियों और जंगली जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह के दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों और सोसाइटीज़ में पौधे लगाए जाते हैं। रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जाता है। इसके साथ ही सरकारी वन विभागों द्वारा लोगों को घरों में लगाने के लिए मुफ्त में पौधे भी बांटे जाते हैं। वो कहते हैं ना, वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। वन महोत्सव केवल औपचारिकता या एक हफ्ते का उत्सव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण के बीच धरती को बचाने का एकमात्र तरीका वृक्षारोपण ही है। इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सभी को कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: दोस्तों, भारतीय वॉलीबॉल के क्षेत्र में चिराग यादव एक ऐसा उभरता हुआ और चमकता हुआ नाम है जिन्होंने अपनी विस्फोटक स्मैशिंग और शानदार खेल से लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। वो आज भारतीय वॉलीबॉल के क्षेत्र में एक यूथ आइकन बन चुके हैं। चिराग यादव का जन्म 11 नवंबर 2000 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। हरियाणा की मिट्टी ने देश को कई महान खिलाड़ी दिए हैं और चिराग भी उसी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। उनकी लंबाई 6 फीट 4 इंच है, जो एक उत्कृष्ट वॉलीबॉल खिलाड़ी के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। खेल के साथ साथ चिराग देश की सेवा भी कर रहे हैं। वो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने साल 2018 में भारत की अंडर-20 वॉलीबॉल टीम की कप्तानी की थी। इसके बाद 2019 के एशियन यूथ अंडर-23 चैंपियनशिप में भारत को ऐतिहासिक सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्राइम वॉलीबॉल लीग में भी वो टीम के कप्तान के रूप में खेलते हैं और देश के सबसे महंगे और लोकप्रिय घरेलू खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। साल 2026 के एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन कप में चिराग ने पूरे एशिया में सनसनी मचा दी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 74 पॉइंट्स बनाए और भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उनके बेहतरीन खेल के लिए उन्हें प्रतिष्ठित उदय कुमार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, चिराग मैदान पर अपनी पावर और प्रिसिशन के लिए जाने जाते हैं। वो टीम में एक आउटसाइड हिटर के तौर पर खेलते हैं। उनकी हवा में कूदने की क्षमता लगभग 340 सेंटीमीटर है, जिससे उनका स्मैश रोकना विपक्षी टीम के डिफेंस के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही वो दमदार सर्विस और मजबूत डिफेंसिव ब्लॉक करने में भी माहिर हैं। क्रिकेट के दीवाने इस देश में चिराग यादव ने वॉलीबॉल जैसे खेल को अपनी मेहनत से एक नई पहचान दिलाई है। दूरदर्शन स्पोर्ट्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने हमेशा युवाओं को खेलों से जुड़ने और भारत का नाम वैश्विक स्तर पर चमकाने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना है कि सही समर्पण से किसी भी खेल में देश का भविष्य बदला जा सकता है। दोस्तों, चिराग यादव केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के

प्रतीक हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसने भारतीय वॉलीबॉल के सुनहरे भविष्य की नींव रख दी है। वो सही मायने में नए भारत के एक चमकते हुए यूथ आइकन है।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: पंचों जय हिंद। देखा भैया, नारा लागल और बैठकी शुरू भइल। भैया हो अपने देश में या दुनिया में समय समय पे कभी कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाला। एकर उद्देश्य होला कि वही बहाने लोग वो दिवस के रूप में जौन अगर वो में कोनो संदेश छिपल बा या कोनो बड़े व्यक्तित्व के रूप में मनावल बा तो उनके आदमी याद कर दे और उनके सदा सुमन
4: अर्पित।
3: यही में आज भैया राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, डॉक्टर्स डे हवे। आज के दिन जौन चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर लोग लगल हमें, उनके अमूल्य योगदान, उनके निस्वार्थ समर्पण के खातिर, उनके सम्मानित कईले खातिर मनावल जाला।
4: बिल्कुल भैया,
3: डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती के भी उपलक्ष्य में मनावल जाला। उनकर जन्म 1 जुलाई 1882 में भइल रहे और आजे के दिन एकसन संजोग रहे कि 1 जुलाई 1962 में ही उनका निर्धन भइल। तो पुण्यतिथि के रूप में और जन्मतिथि के रूप में दोनों में उनका मनावल।
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: भैया, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान और जन कल्याण खातिर 1961 में इनके भारत रत्न से सम्मानित कईल गईल। और भैया भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से 1991 में डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में 1 जुलाई से आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनावल जाला।
4: मनावल जाला, सही कहला भैया। देखा डॉक्टर के काम जो है भैया बड़ा महत्वपूर्ण होला।
3: हाँ, हाँ।
4: और इनके धरती के भगवान भी कहल जाला।
3: बिल्कुल भैया। हाँ,
4: भैया
3: हाँ।
4: इनके सेवा, त्याग, समर्पण, ये कुल भावना के लेके जब ई काम करे और मरीजे के सामने जाले तो इनके

0: देखिके मरीज के मन में एक ठो आशा का संचार होला
1: हाँ
0: और ई भरोसा हो जाला कि भाई डॉक्टर साहब के पास हम आइल बाटी और हमार जौन भी रोग बीमारी बा इनके मदद से इनके सहायता से वो दूर हो जाई।
1: दूर हो जाए।
0: भैया ई आशा और भरोसा बहुत बड़ी चीज होले और कोनो भी मरीज के स्वस्थ कैले में एकर बड़ा भूमिका होले।
1: बिल्कुल भैया,
0: और एकरे साथे साथे भैया जब बढ़िया डॉक्टर के साथ मिल जाला, उनके सेवा के साथ मिल जाला, सहारा मिल जाला, तो मरीज जौन है और तेजी से स्वस्थ हो जाले। भैया देखा देह तो बच सकेले,
1: हाँ
0: लेकिन कोनो घर ऐसा नाई बा जौने में केहू न केहू दवाई न खात हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भैया
1: भैया,
0: पहले रह लोग दवाई अपने से खा लेते रहने, लेकिन अब भैया समय बदल गई, बीमारी भी कई तरह से बदल गई,
1: बिल्कुल
0: कई रूप
1: हाँ
0: लेवे लगली
1: हाँ
0: बीमारी,
1: हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: वर्गीकरण भी हो गई, कई
1: बिल्कुल
0: भाग में बीमारी के बांट दिया गई,
1: हाँ भैया
0: अलग
1: हाँ
0: अलग ओकर इलाज भइल। बहुत सारे विशेषज्ञ लोग एक एक अंग के इलाज के दावा भी करेलें और इलाज करके ओके ठीक भी करेलें।
1: बिल्कुल भैया
0: तो ई सब बात भैया इतना विस्तृत बा, इतना बड़बर बा, इतना ज़्यादा बा कि ये पर बहुत कुछ कहल जा
1: बिल्कुल
0: सकाला।
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: मुख्य बात भैया ई बा कि जे भी डॉक्टर हमार सेवा करता, रोगी के सेवा करता, मरीज के सेवा करता,
1: बिल्कुल
0: चाहे दवा के माध्यम से, चाहे बात के माध्यम से, चाहे
1: हाँ
0: समझौले के माध्यम से,
1: हाँ
0: तो वो डॉक्टर के प्रति भी एक सम्मान के भाव, कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करे खातिर हम समझते हैं कि ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज के दिन
1: हाँ
0: मनावल जाता।
1: मना हो जाला। देखो भैया, इतना नीमन जानकारी देला और अब अपने पंच भाई लोग इंतजार अगोरत होयन, तो भैया एक ठो लोग गीत
0: बिल्कुल
1: सुनल जा
0: भैया, हाँ
1: और फिर अपन बैठ के आगे बढ़ी।

0: देखा आदमी
1: हाँ
0: लोकगीत भी सुन ले मदन मोहन ब्रजवासी के आवाज में, और भैया देखा अपने जौन बैठकी में, भैया जौन हमन के शुरू में राष्ट्रीय
1: चर्चा
0: चिकित्सा
1: कैले रही
0: दिवस के
1: हमन के।
0: कहनी
1: हाँ
0: जा
1: बिल्कुल।
0: चिकित्सक के चर्चा भइल, उनके भाई जौन उनकर कर्तव्य बा ऊपर चर्चा भइल, तो स्वास्थ्य पे भी भैया एक चर्चा। तो स्वास्थ्य जीवन का आधार, यम नियम और संयम, विवेकानंद शुक्ल पर जानकारी देते हुए अपने पंच भाई सुनाए।
2: आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मूल आधार यम नियम और संयम। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों को यम कहते हैं। अहिंसा मन, वचन व कर्म से किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख न देना ही अहिंसा है। सत्य प्रत्येक प्राणी के हित में झूठ न बोलने की क्रिया को ही सत्य कहते हैं। प्रारंभ में भले ही कष्ट, बाधा या परेशानियों का सामना करना पड़े, पर अंत में विजय सत्य की ही होती है। अस्तेय मन, वचन, कर्म से दूसरे के द्रव्य की न तो इच्छा करना, न अनधिकृत रूप से प्राप्त करना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात रसातिक धातुओं की पूर्णता से रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह बहुत धन संपदा आदि का त्याग, सुख भोग संपदा आदि का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। नियम किसी प्रकार के स्वास्थ्य लाभ का नियमित रूप एवं निश्चित समय पर प्रतिदिन का पालन, जैसे निश्चित समय पर भोजन, निश्चित समय पर व्यायाम, सोना, जागना, योग, स्नान, ध्यान, भगवत भजन, आहार विहार का निश्चित समय पर दृढ़ता से पालन करना ही नियम कहलाता है। संयम जो आहार हमारे लिए सात्विक अर्थात सेवनीय है एवं जो आहार हमारे लिए असेवनीय है एवं ऋतुओं के अनुसार विरुद्ध भोजन रहन सहन है या निषेध बताया गया है, उसका ज्ञान आयुर्वेद के अनुसार दृढ़ता से पालन एवं उसका अनुकरण करना ही संयम कहलाता है। तो आइए हम कुछ ऋतुओं के अनुसार आहार विहार की चर्चा करें। वर्षा ऋतु में स्नेह रस के आचूषित हो जाने के कारण शरीर में स्थित जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है। वह दुर्बल जठराग्नि वर्षा काल में वात आदि के दोष से और भी दूषित हो जाती है। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई भूमि पर वर्षा का जल पड़ने से जो वाष्प निकलती है उसके कारण लगातार वर्षा होने से जल के अम्ल विपाकशील होने से और जठराग्नि के मंद पड़ जाने से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में सभी साधारण विधियाँ जिनसे वात पित्त कफ का शमन हो सके और अग्नि प्रदीप्त हो सके, ऐसी क्रियाएँ प्रशंसनीय मानी जाती हैं। वर्षा में वायु कुपित होकर वह अन्य पित्त कफ दोषों को भी अपने प्रभाव से दूषित कर देता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है जब कफ क्षीण हो और पित्त सम अवस्था में हो किंतु वात दोष प्रकुपित हो तो यह वायु कफ पित्त को लेकर जिस जिस अंग में विचरण करता है वहाँ वहाँ वेदना, दाह, थकावट और कमजोरी को पैदा कर देता है। इसी प्रकार शरद में पित्त और बसंत में

में कफ का प्रकोप प्रधान रूप से होता है और दूसरे दो दोष उसके सहचर होते हैं या हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में धूप पड़ने के पश्चात जब पानी बरसता है तो भूमि में से वाष्प निकलती है, यह दोष प्रकोपण में सहायक होती है। अतएव वर्षा के दिनों में प्राणियों का स्वास्थ्य अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक अनियमित हो जाता है। बरसात के दिनों में नंगे पैरों से न चलें, क्योंकि बरसाती पानी कीचड़ आदि के लगने से पैरों में अलसक नामक रोग हो जाता है। इसमें अंगुलियों के बीच में सड़न पैदा हो जाती है, खुजलाने पर दाह एवं पीड़ा होती है। वर्षा ऋतु में निषिद्ध आहार विहार। वर्षा ऋतु में जल में घोले हुए सत्तू, दिन में सोना, रात्रि में छत के ऊपर सोना, नदियों का जल, व्यायाम, धूप का सेवन आज से बचना चाहिए। इस ऋतु में खाने पीने के सभी पदार्थों के साथ यथोचित रूप में शहद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। जिस दिन हवा पानी के कारण अधिक शीत का अनुभव होता है उस दिन शरीरस्थ वायु भी प्रकुपित हो सकता है, अतः उस प्रकुपित वायु की शांति के लिए विशेषतया खट्टे, नमकीन तथा स्निग्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में पाचक अग्नि की रक्षा करने की इच्छुक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पुराने जौ, गेहूं तथा साली चावलों का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में मधु मिलाकर थोड़ी जरूर सेवन करना चाहिए। आसवरिष्ट का सेवन करना चाहिए। बरसात का जल गर्म करके ठंडा किए हुए जल का ही सेवन करना चाहिए। स्नान के समय मोटे तौलिए से शरीर को मलना, स्निग्ध औषध चूर्णों को शरीर पर मलना आदि उबटन स्नान, सुगंधित पदार्थों का अनुलेपन, सुवासित माला धारण एवं हल्के साफ वस्त्रों को धारण एवं ऐसे स्थान पर निवास करें जहां गीलापन न हो। वर्षा ऋतु में मधु के सेवन पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि मधु त्रिदोष नाशक है। हिमालय आदि पर्वत प्रदेशों के निवासी आज भी भोजन में तथा अतिथि सत्कार में चीनी गुड़ की भांत मधु को परोसते हैं। इसी प्रकार सभी ऋतु में आहार विहार एवं निषेध का ज्ञान आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, उसके विषय में भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि वर्षा ऋतु जब शरीर अवयव भीगने के अभ्यस्त हो जाते हैं उसके बाद ही एकाएक शरद ऋतु में सूर्य की किरणों द्वारा तपे हुए प्राणियों के शरीर में वर्षा काल में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकुपित हो जाता है। रोग की उत्पत्ति के पहले ही दोषों का शमन करना चाहिए, यथा बसंत ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का और वर्षा ऋतु में वायु का शमन करना चाहिए। शरद ऋतु में प्रशस्त आहार विहार। शरद ऋतु में मधुर, जल्दी पचने वाला, शीतल, तिक्त रस प्रधान करेला तथा जिससे प्रकुपित पित्त का शमन हो सके ऐसे अन्नपान का भली भांत भूख लगने पर उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। वर्षा के अंत में तिक्त द्रव्यों द्वारा सिद्ध किए हुए तिक्तक अथवा महातिक्तक घृत का पान, विरेचन तथा रक्तमोक्षण कराना हितकर होता है। इन दिनों पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है। यदि भली भांत भूख लगने के पूर्व ही भरपूर भोजन कर लेंगे तो अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर अस्वास्थ्य का कारण हो जाएगा, अतः भूख लगने पर भी लघु भोजन ही करना चाहिए, अर्थात कटु, अजीर्णकारक, विदाही, अम्ल, क्षार आदि पदार्थों के सेवन से बढ़ा हुआ पित्त उस प्रकार पाचक अग्नि को बुझा देता है जैसे गर्म पानी आग को। ऋतुओं के जो स्वाभाविक गुण हैं उन गुणों में अत्यधिकता होने से अथवा स्वाभाविक गुणों में विपरीत गुणों के आने से, अर्थात वर्षा ऋतु में वर्षा के न होने से या ऋतुओं के स्वाभाविक गुणों में विषमता अर्थात गर्मी में सर्दी अथवा सर्दी में गर्मी, इस प्रकार की अनेक ऋतु व्यापत्तियों होने से प्राणियों के बात आदि दोष कुपित हो जाते हैं।
अतः इन

0: स्थितियों में जब जिस ऋतु के लक्षण दृष्टिगोचर हों उस अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पित्त शामक क्रियाओं में सर्वोत्तम क्रिया विरेचन है। यह कार्य कार्तिक अर्थात शरद ऋतु के अंत में करना चाहिए। शरद ऋतु में निषिद्ध आहार विहार। शरद ऋतु में धूप के सेवन, वसा, तैल, ओस, क्षार, दही, दिन में सोना और पूरब से बहने वाली हवा का सेवन त्याग देना चाहिए। इस समय पाचक अग्नि दुर्बल रहती है, वाग्वात में नमी रहती है, अतः यह रोगों को उत्पन्न कर देती है तथा कुछ पुराने संधिवात, अर्थराइटिस तथा श्वास मने अस्थमा आदि रोगों को भी उभार देती है। अतः ऋतुओं के अनुसार यदि नियम संयम से रहें तो निरोग एवं दीर्घायु रहा जा सकता है। बरसात ऋतु में अग्नि मंद एवं वात आदि दोष प्रकोपित रहने के कारण ज़्यादा चरपरे, खट्टे, नमकीन, विदाई पदार्थ, पूड़ी, पनीर, मैगी, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग, तेल मसाले, मैदायुक्त भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात आदि दोष के दूषित रहने पर और भी दूषित हो जाता है। वर्षा ऋतु में अग्नि की वृद्धि के लिए हरित की अर्थात हर्रे, सौंठ, सौंफ, काला नमक, काली मिर्च का चूर्ण बनाकर मधु के साथ लेने से त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ का शमन हो जाता है। बरसात में जल के दोष को शमन एवं आम दोष के पाचन के लिए त्रिकटु अर्थात सौंठ, मरीच, पीपर का प्रयोग बरसात में अवश्य ही करना चाहिए, जिससे वातादि दोष का शमन हो सके, क्योंकि वायु के दोष से पित्त और कफ दूषित हो जाते हैं, क्योंकि पित्त अपंगु, कफ अपंगु, पंगो मलधातव, वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। जैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं और वायु का तेज हवा झोंका सारे बादलों को तितर बितर कर देता है, वैसे ही शरीर में वायु है। पित्त कफ शरीरस्थ मल अर्थात मल मूत्र पसीना धातु अर्थात रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, यही आयुर्वेद में सप्त धातु हैं। ये सब पंगु हैं, सबका संचालन करने वाला वायु है, इसलिए वायु का शमन ही आयुर्वेद में सर्वोपरि चिकित्सा है। बरसात में शहद का प्रयोग बहुत ही प्रशस्त माना गया है, क्योंकि मधु योग वायु होता है, ज्यों ही जीभ पर जाता है पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए औषधियों का प्रयोग मधु के साथ किया जाता है, जिससे शरीर में जल्द से जल्द प्रभावी हो सके। भोजन में कभी भी दूध और नमक का संयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध भोजन हैं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
1: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते गुनगुनाते
5: सुनिए सुबह 10:05 पर,
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
6: हाँ भैया, देखा विज्ञापन संदेश के पहले हमन के बद कही सुनल गई।
7: हाँ, हाँ।
6: स्वस्थ जीवन का आधार यम, नियम और संयम, ई जानकारी देते रहें विवेकानंद शुक्ल जी। तो भैया इनके दिहल जात धन्यवाद। और भैया देखा कितना अच्छा जानकारी मिलल है कि अगर जीवन में भाई सब कुछ संतुलित रहे,
7: हाँ, हाँ,
6: तो
7: हाँ।
6: स्वास्थ्य भी ठीक रही, स्वास्थ्य संतुलित रही,
7: दिनचर्या भी सही है। जैसे पुरनिया अपन रहले तो उनकर प्रातः काल भोर में उठले के नियम, समय से अपन आहार लेले के नियम, और भैया सुतले उतले के भी नियम रहे।
6: बिल्कुल।
7: ओकरे अलावा पैदल चलत रहे, शुद्ध भोजन करत रहे, और भैया जो अपने

0: अगल बगल अपन पर्यावरण ठीक रखत रहने, इतना भैया नाहियो गमला जेकरे लगे रहे ते बाग बगीचा में छोट मोट पेड़ लगावे, उहे पेड़वा दू चार साल बाद जब बड़ा हो जाए धीरे धीरे देखत देखत अगल बगल के हर घर के अगल बगल 10-5 पेड़ रहत रहे भैया, और अपन पर्यावरण भी ठीक रहत रहे।
1: ए भैया देखो अब रोकब हम तुमके, अपने समय के सीमा बा, हमन के समय धीरे धीरे खत्म होत बा, तो यही कुल बदगही के साथे हमन के चलने का समय हो गेल बा, चलल जा।
0: पंचो जय हिंद।

ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। डिजिटल इंडिया अभियान का आज 11 बरिस पूरा हो गई। ए मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने कि डिजिटल इंडिया अभियान सुशासन के नया दिशा आज देश के समग्र विकास के गति देले हो। पछला 11 बरिस में डिजिटल इंडिया अभियान के उपलब्धियन के लेके प्रस्तुत बाई को रिपोर्ट।
1: भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 का शुभारम्भ कैले। ए मौका पर मुख्यमंत्री लोगिन से स्कूल चलो अभियान के जन आंदोलन का हिस्सा बनौले का आह्वान कैले।
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं।
0: महाराजगंज या सीतापुर के साथ ही प्रदेश के कई गो और यो जिलों में स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन कैल गई। मुख्यमंत्री सहारनपुर में अजुए 613 करोड़ रुपया से बेसी के लागत के कई गो परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यासो कैले। प्रदेश भर में 31 जुलाई ले चले वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आज से शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में ए अभियान के साथे साथे 11 से 31 जुलाई ले प्रस्तावित दस्तक अभियानों का उद्घाटन कैले। ए मौका पर श्री पाठक जन जागरूकता रैली के हरियर झंडी देखा के रवाना कैले आ रैली में प्रतिभागो कैले। वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया आ अम्बेडकर नगर के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में जन जागरूकता रैली निकाल के लोगों के बीच संचारी रोगन से बचाव का संदेशा दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन कैले के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मीडिया से बात कैले।
3: पूरे महीने में जो है इस तरह

0: कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं। तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
1: प्रदेश सरकार अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदागमन के आरोपियन के जांच कर रहल विशेष जांच दल SIT के 15 दिन का औरियो समय देले हो। 15 जून के गठित SIT के 7 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के भीतर आखिरी रिपोर्ट प्रस्तुत कैले का निर्देश दिया गई रहे, जेकर समय काल ही पूरा हो गई। विकसित भारत रोजगार आ आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम आज से लागू हो गई हो। अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरों आज से लागू हो गई।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: उन्नाव जिला के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एगो स्लीपर बस आकार में भइल टक्कर में 5 जने का मौत हो गई, वहीं कई जने ओरियो घाही हम है। ये दुर्घटना वो समय भइल जब हरियाणा से बिहार जा रहल स्लीपर बस वही लेन में आगरा से लखनऊ जा रहल एगो कार के पाछे से टक्कर मार देलस। समाचार पूरा भेल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान की उपलब्धियों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजी लॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन का हिस्सा बनाए जाने का आह्वान किया।
4: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाए, हर बच्चे को स्कूल पहुँचाए।
1: महाराजगंज और सीतापुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में आज ही 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रदेश भर में 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज से शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में इस अभियान के साथ साथ 11 से 31 जुलाई तक प्रस्तावित दस्तक अभियान का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली में प्रतिभाग भी किया। वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अम्बेडकर नगर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का

0: संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
1: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा, विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि कल समाप्त हो गई। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी आज से लागू हो गई हैं।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: उन्नाव जिले के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एक स्लीपर बस और कार में हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा से बिहार जा रही स्लीपर बस ने उसी लेन में आगरा से लखनऊ जा रही एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बारी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पंचो जय जवान जय किसान।
8: हाँ भैया, देखा नारा लागल, बैठकी शुरू भइल। भैया हो, हमन के अपने बैठकी में हमेशा देश के तरक्की, देश के विकास के बात कही जाला, जो सरकार के विभिन्न योजना के माध्यम से सरकार के ही प्रयास रहेला, चाहे भारत सरकार हो के चाहे अपने देश के कोनो भी राज्य सरकार हो के, उनका प्रयास रहेला कि देश हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे और तरक्की करे। और भैया यही के साथ ही साथ पर्यावरण भी शुद्ध रहे, जो आज के जीवन के सबसे बड़ा आवश्यकता बा। यही क्रम में भैया अपने वन महोत्सव मनावल जाता,
9: बिल्कुल,
8: और ओकर उद्देश्य 1 जुलाई से मनावल जाता। ओकर उद्देश्य बा कि हरा भरा अपने अगल बगल के क्षेत्र है, सरकारों में प्रयास कर दिया, और जौन आम आदमी भी ये क्षेत्र में आगे आवत हो, उनके सरकार प्रोत्साहित करके निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराओ कि भैया आप लगाई, ओकर देख रेख भी सरकार करी, ताकि आवे वाला भविष्य में पर्यावरण चिंता के भाई बात उतना ना रहे।
9: बिल्कुल सही कहा भैया, ये पेड़ पौधा जौन भी बांटे, हाँ हाँ। इस सब भैया अपने धरती के एक तरह

0: ई कहल जाए कि फेफड़ा हमें
1: हाँ
0: तो इमें कोनो बड़ी बात नहीं बा, इमें कोनो अतिशयोक्ति नहीं बा।
1: हाँ
0: और अगर इनके फेफड़ा कहल जाता तो एकर कारण भी बा, एलिए भैया कहल जाला धरती के फेफड़ा कि ई जौन है ऑक्सीजन के उत्सर्जन करल हैं, ऑक्सीजन छोड़ल हैं, जौन कि मनुष्य खातिर, धरती खातिर और ई कहल जाए भैया सबके खातिर ही बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया हाँ
0: अगर यह दृष्टि से देखल जा तो एक दू पेड़ पौधा तो सभी लगैबे कराला, मौका पर अवसर पर लोग
1: हाँ
0: लगावत रहें। लेकिन ई जौन वन महोत्सव सप्ताह मनौले के जौन उद्देश्य बा
1: हाँ हाँ
0: कि एक हफ्ता तक लोग अपने आसपास के क्षेत्र में मिलजुल के और सहयोग से, सहकारिता से जगह जगह ज़्यादा संख्या में पेड़ लगावें।
1: हाँ भैया हाँ
0: अब भैया पेड़ में जंगली पेड़ भी आ जाएँ, फलदार पेड़ भी आ जाएँ, तो भैया एक कुल के मिला जुला रूप अगर लगावल जा
1: हाँ
0: तो ये मनुष्य खातिर भी अच्छा रही और जौन भी पशु पक्षी बाणे उनके खातिर भी अच्छा रही।
1: बिल्कुल भैया
0: अब भैया देखा एक ठो प्रवृत्ति चल गई बा कि जहाँ रहता ऐसन पेड़ लोग लगा देता टें जौन के कोनो मतलब नहीं निकरा था भैया,
1: हाँ
0: खाली हरियाली रहतिया,
1: हाँ
0: न
1: हाँ
0: ओमे फूल आवता न फल आवता।
1: बिल्कुल
0: एक तरह
1: भैया
0: से कल जा भैया पूरी तरह से जौन है ये जंगली पेड़ पौधा लगा दिया
1: हाँ
0: जाता।
1: हाँ
0: अगर एकरे जगह पर भैया फलदार वृक्ष लगावल जा,
1: हाँ हाँ
0: जैसे नीम के पेड़ भइल,
1: हाँ
0: जामुन के पेड़ भइल,
1: हाँ हाँ
0: आमे के पेड़ भइल,
1: हाँ अमरूद हो गए
0: अमरूद
1: हाँ
0: भइल,
1: हाँ
0: पीपल भइल,
1: हाँ
0: बरगद भइल, पाकड़ भइल,
1: हाँ
0: इमली भइल,
1: हाँ
0: अगर ए तरह के पेड़ लगाता तो ऐसे कई फायदा होई भाई। एक तो जे भी एकर उपयोग कैल चाहिए फल के रूप में, फूल के रूप में एकर उपयोग कर सकेलें,
1: औषधि के रूप में भी
0: औषधि
1: भैया
0: के भी रूप में एकर उपयोग कर
1: बिल्कुल
0: सकेलें।
1: हाँ
0: और जौन हम कहलिए एकर पहले कि जौन भी जंगली जानवर बाटें
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: उनके अपने रहवास क्षेत्र में ही अगर फल मिल जाए, जैसे
1: हाँ
0: बंदर भइलें भैया,
1: हाँ हाँ
0: हाथी भइलें,
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तो ए तरह
1: हाँ
0: के जौन भी शाकाहारी जानवर बाटें,
1: हाँ हाँ
0: जौन भी पशु बाटें, वो
1: बिल्कुल
0: जौन
1: भैया
0: है निवासी क्षेत्र में नहीं आई हैं,
1: हाँ
0: जहाँ आदमी रहता वहाँ नहीं आई हैं
1: वो बाग
0: और
1: बगीचा तक सीमित रही
0: बिल्कुल
1: हैं
0: उनके जौन आवश्यकता के पूर्ति बा, जौन उनके फल फूल चाहिए वो वही क्षेत्र में मिल जाए, जंगल क्षेत्र में ही मिल जाए, वन क्षेत्र में ही मिल जाए। तो अगर इस तरह के नीति बना के लोग काम करें और एक साथ मिल के काम करें तो हम समझते हैं कि ये मनुष्य खातिर, पशु पक्षी खातिर और प्रकृति खातिर,
1: अच्छा रही
0: सबके खातिर बहुत बढ़िया रही।
1: बिल्कुल
0: कहल भी
1: भैया
0: जाला भैया जो जंगल बाणो बरसात के आकर्षित करे लें,
1: हाँ हाँ
0: नमी
1: हाँ
0: बनौले रखे लें, आसपास के क्षेत्र में हरियाली तो रहबे
1: और
0: करे लें,
1: पर्यावरण भी भैया
0: वहाँ के
1: शुद्ध रहला
0: वातावरण भी साफ सुथरा रहला,
1: हाँ
0: संतुलित रहला,
1: हाँ
0: जौन भी खराब गैस होले, जौन भी प्रदूषण वाली गैस होले, कार्बन डाइऑक्साइड भइल, कार्बन मोनोऑक्साइड भइल, ए तरह के जौन भी गैस मनुष्य खातिर हानिकारक बाड़ी, पर्यावरण खातिर हानिकारक बाड़ी, वो सब गैस के ये सब ओकर असर कम कर देलें और अपने ऊपर ले लेलें पौधा। और एकरे साथे साथे भैया लैके पढ़त भी रहें, लोग जानत भी रहें, अपने किसान भाई लोग भी जान लें
1: बिल्कुल भैया
0: कि मिट्टी के ई बांध के रखले रह लें, कटाव के कम करे लें।
1: हाँ
0: और एकरे साथे भैया जरूरत पड़ल तो भाई मकान बनौले में लकड़ी के उपयोग हर जगह
1: हाँ
0: होला,
1: हाँ
0: वो काम भी आवे लें। तो एक कुल दृष्टि से अगर देखल जाए तो भैया ये जो है वन महोत्सव सप्ताह मनावल जाला ई बहुत प्रासंगिक बा और ख़ास तौर से बरसात के मौसम में मनावल भी जाला, जुलाई में 1 से 7 जुलाई तक।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया
0: ऐसे स्थिति में जो ई वन महोत्सव सप्ताह मनावल जाला एकर उद्देश्य यह बा कि लोग वन के प्रति जागरूक होखें, एक संरक्षित करें और मनुष्यता के भलाई खातिर
1: हाँ
0: अधिक से अधिक पौधरोपण करें
1: हाँ
0: और जंगल लगावें।
1: हाँ भैया इतना आप बढ़िया जानकारी देला भैया। हम चाहते हैं एक बाद एक किसान भाई भेंट वार्ता सुने, अरहर की प्रजातियां और बुआई विधि जानकारी देते हैं डॉक्टर अंगद प्रसाद, इनसे बतियाओ थे भैया विनय कुमार।
2: अपने यहाँ बारहो मास जौन दाल खाइल जाला ओकर ज्यादातर हिस्सा अरहर का होला, जौन के हमन का रहर के भी नाम से जानल जाला। अपने यह पूर्वांचल से अरहर का खेती धीरे धीरे काफी कम हो गई बा। एकरे पीछे कई कारण बा। अच्छा बीज का, उकठा लगला का, बंझा वाली अरहर का, लेकिन समय के साथ तकनीकी बदलल, हर चीज का व्यवस्था कैल गई। अगर आपके पास खेत अबहियों खाली बा तो यह साल बरसात में अरहर का आप खेती कर सकेली। एकरे बारे में जानकारी देवे खातिर आज अपने साथ हैं फोन लाइन से डॉक्टर अंगद प्रसाद, वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी जनपद मऊ। डॉक्टर साहब, आप ये बताई कि अरहर का जौन बीज उत्पादन कैला का तकनीकी है, वो सामान्य जौन खाए वाली अरहर है ओकरा से कौना तरीका से भिन्न है? का अरहर के खेती बीज और खैला दोनों खातिर कैला में फर्क का पड़ेला?
3: किसान भाई

0: बुवाई करते हैं तो 60 सेंटीमीटर उसकी लाइन से लाइन दूरी करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर इस तरीके से हम बुवाई करते हैं तो हमको दवा छिड़कने में या उसमें खरपतवार ना जो निकालने में ये ज्यादा आसानी हो जाता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं उसकी उत्पादन भी जो हम छिटकवा विधि से बोते हैं उससे उसकी पैदावार अधिक होती है। छिटकवा विधि में क्या है, जो छिटकवा विधि से बोते हैं उसमें हमारी अरहर का सीड ज्यादा लगता है और जो हम लाइन से बोते हैं उसमें कम लगता है। जैसे हम जो सीड बोल्ड होता है जिसके दाने बड़े होते हैं उसको 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसकी सीड रेट रखते हैं, जिसके दाना छोटा होता है उसको 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम बुआई करते हैं। उसी तरीके से अगर छिटकवा बोएंगे तो ज्यादा सीड लगेगा और लाइन से बोएंगे तो हमारा सीड रेट कम हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी बीज बोते हैं हम दलहनी का तो हम उसको बीज उपचार जरूर करते हैं। बिना बीज उपचार किए अगर हम बुआई कर देते हैं तो उसमें तमाम तरीके के रोग लग जाते हैं और उस फिर रोग से निदान नहीं पाते हैं। तो बीज बोने से पहले हम उसको 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम किसी एक से 2 ग्राम मात्रा लेकर के 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी इसमें कमी रह जाती है, किसान भाई राइजोबियम कल्चर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए भी हमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। 10 किलोग्राम सीड के लिए 200 ग्राम का एक राइजोबियम कल्चर आता है पैकेट, आप उसको लीजिए और अच्छी तरीके से पहले आप बीज को उपचारित कर लीजिए। बीज उपचारित करने के बाद आप राइजोबियम कल्चर का 10 किलोग्राम सीड के लिए एक पैकेट राइजोबियम कल्चर उसको 1 लीटर पानी में मिला करके और अच्छे तरीके से उस पर फैला दीजिए। जब फैलाने के बाद थोड़ा सूख जाए छाए में रख के और शाम की तरह जब भी आप बुआई करेंगे तो शाम के समय बुआई करें, क्योंकि अगर आप धूप में इसका बुआई कर देंगे तो राइजोबियम कल्चर मर जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि हम जब भी इसकी बुआई करेंगे अरहर की तो शाम के समय हमको इसकी बुआई करना है।
1: अरहर का उन्नतशील प्रजात कौन है जेकर यह साल बुआई करे के चाहिए?
0: देखिए, जुलाई महीना चल रहा है, जो अगेती प्रजाति थी वो जून के प्रथम सप्ताह में बुआई की जाती थी, लेकिन अब इस समय जो बोने का समय है जुलाई महीना चल रहा है, इस समय कई वैरायटियां हैं आप जिसकी आसानी से बुआई कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 2 है, आजाद है, पूसा 9 है, मालविया है, मालवीय चमत्कार है, इस सब की बुआई आप इस समय कर सकते हैं। एक वैरायटी है राजेंद्र अरहर 1, ये अभी हाल ही की रिलीज हुई है, 2015 की है, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। इसकी भी पैदावार 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है और ये बाज अवरोधी उकठा अवरोधी प्रजाति है और जितनी भी प्रजाति मैं आपको बता रहा हूँ ये 260 से 270 दिन में ये पक कर के तैयार हो जाएंगी। साथ ही साथ ये आप अपने पूर्वांचल के लिए बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, इसका समय समय पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें आप कुछ उर्वरकों का प्रयोग मैं बताता हूँ, जैसे आपकी मिट्टी जैसे भी हो आप एक बार जांच करवा लीजिए, उस हिसाब से आप 15 से 20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करिए और 40 किलोग्राम डीएपी, 20 किलोग्राम पोटाश, ये आप पर हेक्टेयर की दर से आप इसकी बुआई करते समय इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ किसान भाई जब बुआई करते हैं तो देखते हैं अरहर में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है। किसान भाई इसीलिए डरते हैं कि बहुत सारा खरपतवार उग जाता है तो उसको बोने से लिए पीछे हटने लगते हैं, जिससे वो समस्या पैदा होती है। उसके निदान के लिए आप बुआई के 72 घंटे के अंदर एक दवा आती है पेंडामिथिलीन, पेंडामिथिलीन का प्रयोग 3.3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई के 72 घंटे के अंदर अगर आप प्रयोग कर देंगे तो आपके खेत में खरपतवार

0: उगेंगे, अगर उग भी जाते हैं थोड़ा बहुत खरपतवार, तो आप उसको निराई गुड़ाई करके खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्रजातियों का आप सिलेक्शन कर लीजिए और इन्हीं प्रजातियों की बुआई करिए। और इसमें अगर आपके खेत में कोई और रोग लग रहा हो या कीड़े मकोड़े लग रहे हो, तो उसके लिए भी आप पहले से ही नीम आयल आता है 5% का 2 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके फूल आने के बाद आप उसमें स्प्रे कर देंगे, तो जो कीड़े लगते हैं फली बनते समय वो कीड़े नहीं लगेंगे, तो उससे भी आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। अगर इसमें सिंचाई की बात आती है तो सिंचाई की एक ही आवश्यकता पड़ती है। कभी कभार जैसे बारिश नहीं होता है तो आप इसकी एक अवस्था आती है जब वो फलियां बनती है, अगर आवश्यकता हो तो एक सिंचाई आप उस समय कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, यह समय जितना आप प्रजात बतौली हैं ओकर बीज ले लोग और खेत के खूब बढ़िया से तैयार करके उसमें फास्फोरस वाली उर्वरक और खाद के रूप में जो घरेलू खाद बा गोबर कंपोस्ट का डाल के खूब बढ़िया से लाइन से अरहर का बुआई करें। हो सके अगर उनके पास मशीन होके तो बुआई कैला के बाद मेड़ भी चढ़ा दें, मेड़ पर कैला से उत्पादन अपने आप बढ़ जाए और बरसात में जौन पानी से अरहर गले ले ओकर भी नियंत्रण हो जाए।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते
6: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
7: भैया विज्ञापन संदेश के पहले हमन के भेंट वार्ता सुनल गए।
8: हाँ, हाँ।
7: अरहर की प्रजातियां और बुआई विधि डॉक्टर अंगद प्रसाद से जानकारी दिया उतर भैया विनय कुमार दिहल जा इलोन के धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में सुनल जाए एक ठो लोकगीत।

0: हाँ भैया देखा, मदन मोहन ब्रजवासी की आवाज में लोकगीत भी सुनल गई। और भैया एक भेंटवार्ता किसान और पंच भाई के और सुनवाओल जा। धान की रोपाई में उर्वरक प्रबंध जानकारी देत हुन डॉक्टर एस के तोमर, इनसे बतियावत हुन भैया विनय कुमार।
1: जे किसान भाई धान का बेहन डल्ले बाटे, अब वो अपने रोपाई खातिर तैयारी करत बा। धान का रोपाई कैसे कइल जा, कैसे खाद का इंतजाम कइल जा, एकरे खातिर जानकारी देवे आज अपने कार्यक्रम में फोन लाइन से जुड़ल हुआ डॉक्टर एस के तोमर जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। धान के रोपाई करत समय कौन कौन खास बात ध्यान रखे के चाहिए?
2: देखिए, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी किसान भाई धान की रोपाई करने जाते हैं तो दो तीन बातों का विशेष तौर से किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो धान की आपकी नर्सरी है वो देख लें कि 21 से 25 दिन की नर्सरी हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। सामान्य दशा में, सामान्य दशा में जहां आपकी जमीन जो है ऊसर नहीं है,

0: अगर उछरीली जमीन है तो वहां पर आपकी नर्सरी जो है 35 से 40 दिन की नर्सरी अच्छी रहती है। एक बात का तो ध्यान रखें। दूसरी बात का ध्यान रखना है किसान भाई को कि आप जब रोपाई करते हैं तो आपके जो हमारी देसी प्रजातियां जिनको हम कहते हैं ओपी प्रजातियां भी कहते हैं, उनकी प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या या जो पूंजे होते हैं उनकी संख्या 50 प्रति वर्ग मीटर होने चाहिए। हाइब्रिड में ये संख्या कम हो सकती है क्योंकि उसमें कल्ले ज्यादा निकलते हैं, लेकिन ओपी वेराइटी में हमारी वो कल्लों की संख्या 50 कम से कम होनी चाहिए, इसको किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप रोपाई करने जाते हैं तो ये ध्यान रखें अपने लेबर को ये ताकीद करें कि आप जो धान है वो ज्यादा गहराई पर न गाड़े, तो उसकी जो गहराई है उसको सामान्य गहराई पर रखें। कई बार किसान भाई जब आप पाटा या लेवा लगाते हैं रोटावेटर से, ऊपर की मिट्टी बहुत ढीली हो जाती है और लेबर जो है उसको रोकने के लिए बहुत गहराई तक उसको गाड़ना पड़ता है क्योंकि पौधा रुकता नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर रोटावेटर से आपने लेव लगवाया हुआ तो थोड़ा मिट्टी जब पौधे को पकड़ने लायक हो जाए तब आप उसको जो है रोपाई कराएं। ज्यादा गहराई पर रोपाई करने से आपके कल्ले कम निकलते हैं और देर से निकलते हैं, तो एक चीज तो किसान भाई को ये रोपाई में ये ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि रोपाई आपको कब करनी है, जो समय है आपका उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। देखिए हमारे यहाँ जो मध्यम अवधि की प्रजातियां हैं या लंबी अवधि की प्रजातियां हैं उनकी रोपाई हर हाल में आपको जून लास्ट तक आपको कर लेनी चाहिए, यानी कि जून का जो आखिरी सप्ताह होता है उसमें अगर रोपाई कर लेते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। और आप इसके बाद अगर रोपाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पादन में थोड़ा फर्क पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे तो रोपाई जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के और 15 जुलाई तक सामान्य प्रजातियों की रोपाई किसान भाई कर सकते हैं। जहां तक सुगंधित धान की बात है और खास करके हमारे क्षेत्र में चूंकि काला नमक की खेती बहुत होती है तो काला नमक की जो रोपाई है वो किसान भाइयों को चाहिए कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में किसान भाई करें, तो उसमें सुगंध आपको अच्छी मिलेगी। और जिसके लिए आप काला नमक की खेती करना चाहते हैं उसका जो फ्लेवर है एरोमा जिसको कहते हैं वो अच्छा आएगा। तो किसान भाई इन चीजों का जो है जरूर ध्यान रखें। जो लंबी अवधि की प्रजाति है खास तौर से उनकी जो रोपाई है वो थोड़ा इसके पहले किसान भाई कर सकते हैं जिससे आपका गेहूं की बुआई को लेट ना हो। तो इस चीज को किसान भाई ध्यान रखते हुए आप जो है रोपाई करें।
1: पौधा से पौधा का दूरी जैसे आप बतौली हैं कि 1 मीटर लम्हर 1 मीटर चाकर खेत बाटे, वो में 50 गो पूंजा होके के चाहिए आ एक जगह 2 गो धान का पौधा लगे के चाहिए
0: हाँ,
1: आ
0: दो से
1: धान
0: तीन
1: ज्यादा
0: पौधे।
1: गहराई पर रोपाई ना करे के चाहिए। यही तरह से बढ़िया उपज मिले माटी का जांच करावला के आधार पर खाद जौन बा ओकर कितना प्रयोग करे के चाहिए।
0: हाँ देखिए, इसमें एक जो रोपाई की हम बात कर रहे थे कि 50 पौधे होने चाहिए प्रति वर्ग मीटर, इसमें जो दूरी है अगर किसान भाई लाइन से रोपाई करता है, ज्यादातर हमारे किसान भाई लाइन से रोपाई नहीं करते हैं, हम किसान भाई से ये भी आग्रह करेंगे कि हमेशा लाइन से रोपाई करें। इससे क्या होगा कि पौधे को दूसरे पौधे से दूरी सामान्य होने के कारण उसको जो अपनी भोजन लेने के जो स्थान चाहिए वो उसको पर्याप्त मिलेगा, तो आपकी पैदावार होगी। इसके लिए 20 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौधों की रोपाई करें। दूसरा आपने पूछा कि उर्वरकों के बारे में, दो चीजों को विशेष तौर से किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी वो प्रजातियां हैं जो मध्यम से लंबी अवधि की प्रजातियां हैं, इनमें प्रति हेक्टेयर जो नत्रजन पोटास फास्फोरस और पोटास की मात्रा है एनपीके जो तत्व रूप में हम कहते हैं वो 150 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में किसान भाई को देना चाहिए। अब बात आती है कि इसको हम उर्वरक के रूप में कैसे बताएं, इतना होना चाहिए। तो इसमें देखिए किसान भाई को ये देना चाहिए कि आपको प्रति एकड़ 115 किलोग्राम यूरिया, 52 किलोग्राम डीएपी और 30 किलोग्राम, 27 से 30 किलोग्राम आती है मात्रा लेकिन उसको देखते हैं, 30 किलोग्राम पोटास जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, ये प्रति एकड़ मात्रा आपको देनी चाहिए। इसमें फास्फोरस और पोटास और नत्रजन की 1/3 मात्रा आप जो है रोपाई के समय अपने धान के खेत में देंगे। बाकी जो 2 डोज बचती हैं वो कल्ले बनते समय

0: और बाली आते समय, बाली निकलने के पहले आप अपने खेत में देंगे। तो इसको आप, ये तो उर्वरक की बात हुई कि आप कितना देंगे। अब बात आती है जिंक की। देखिए, जिंक एक ऐसा तत्व है जो पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए, और हम ये देखते हैं कि किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। एक तो जिंक को हर साल आपको खेत में नहीं देना है, अगर बहुत कमी आपके खेत में या आपके पौधे में नहीं दिखाई देता है तो हर साल नहीं देना है। और अगर आप देना है आपको तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट आप खेत की तैयारी के समय मिलाएंगे। रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं उस समय आप जिंक को नहीं डालेंगे। तीसरी बात, जब आप देखते हैं कि हमारी नर्सरी में ऊपर से पत्तियां सफेद हो रही हैं और आप खेत में आप रोपाई करते हैं और पत्तियां सफेद होती है, तो वहां पर अगर आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो फेरस सल्फेट का छिड़काव एक होना चाहिए। और छिड़काव जो होगा उसमें 4 ग्राम फेरस सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी नर्सरी में या आप अपने खेत में जहां आयरन तत्व की कमी है वहां पर आप छिड़काव करेंगे। जहां पर सुगंधित धान की बात करते हैं हम या काला नमक धान की बात करते हैं, तो इसमें किसान भाई को ये चाहिए कि रासायनिक उर्वरकों का अगर संभव है तो कम से कम प्रयोग करें और ज्यादातर कंपोस्ट खाद का या जैव उर्वरकों का प्रयोग करें।
1: भैया देखा, धान
0: भैया
1: की रोपाई में उर्वरक प्रबंध डॉक्टर एस के तोमर से जानकारी दिया उतरल भैया अभिनय कुमार दियल जाए लोन के धन्यवाद। और अपने कार्यक्रम का समय समाप्त होत बा,
0: हाँ,
1: चलल जा
0: पंचो
1: पंचो,
0: जय
1: जय जवान
0: जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। ग्राम सिंदुरिया, थाना सिंदुरिया, जनपद महाराजगंज से राम विजय विश्वकर्मा अपनी पुत्री चांदनी विश्वकर्मा के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। दो जून 2026 से लापता चांदनी विश्वकर्मा की उम्र 18 वर्ष है। कद 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। चांदनी विश्वकर्मा के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 9695548526 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें, 9695548526। ग्राम भरवलिया, थाना ठूठी बारी, जनपद महाराजगंज से रामप्रीत चौरसिया अपनी पुत्री बबीता कन्नौजिया के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। 5 जून 2026 से लापता बबीता कन्नौजिया की उम्र 30 वर्ष है। कद 4 फीट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल और इकहरा शरीर है। बबीता कन्नौजिया के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 9616271180 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें, 9616271180। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में।

0: अपने संग्रह के लिए प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है चली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इसमें कलाकार हैं भागीरथी और साथी। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देवी गीत से।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज आप सुन रहे हैं भागीरथी और साथियों से लोकगीत। अभी आप सुन रहे हैं इनके स्वर में ये लोक भजन।
5: आइली जब की योग माया, अरे मत

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे भागीरथी और साथियों से लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए डॉक्टर आद्या प्रसाद से वार्ता। विषय है सेहत का राज मोटे अनाज।
1: साल 2023 के संसार भर में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनावल जा रहा बा। सन 2021 में भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में ई प्रस्ताव पेश कैलस कि मोटा अनाज के विश्व स्तर पर फैलवले के प्रयास कैल जा। 5 मार्च 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा सन 2023 के मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनावले के घोषणा कैलस। भारतवर्ष के ये प्रस्ताव के दुनिया के 72 देश अपन समर्थन दिलाए। भारतीय उपमहाद्वीप में मोटा अनाज के चलन और एकर प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चलिया रहल बा। काहे कि मोटा अनाज खातिर हमारे देश के जलवायु और मिट्टी बहुत मुफीद हवे। एकर पोषकता और गुणवत्ता से हमार पुरखा लोग खूब परिचित रहलाए। आयुर्वेद के लगभग सब ग्रंथन में मोटा अनाज के जेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अन्न के संज्ञा देले हवे, एक सूक धान्य खंड के अंतर्गत विस्तार से चर्चा कैल गेल है। अनेक तरह के शोध से भी मोटा अनाज के गुण प्रमाणित भइल हवे। मोटा अनाज एक तो सेहत बदे बहुत उपयोगी हवे, दूसर ये कम लागत में भी अच्छा उत्पादन दे देला। अपने देश में मोटा अनाज में बाजरा, रागी, कुटकी, सावा, ज्वार, कंगनी, मड़ुआ और कोदो के शामिल कैल बा। लेकिन एकरे अलावा भी कुछ और भी अनाज हवे जेके में शामिल कैल जा सकाला, जैसे जौ, मक्का, रामदाना और फल में महुआ। लोक व्यवहार में इन अनाजन के बहुत महत्व है। श्रीअन्न भारत और दुनिया के लोगन द्वारा खेती और उपभोग कल सबसे शुरुआती काल के अनाजों में मानल जाला। सन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जेके अंग्रेजी में मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित भइल बा, एकर महत्व मानल गइल। एकर असर भी जगह जगह देखे के मिल रहल बा। 18 मार्च 2023 के नई दिल्ली में वैश्विक मोटा अनाज सम्मेलन के संबोधित करत प्रधानमंत्री मोदी जी कहलें कि श्री अन्न विपरीत भइल जलवायु परिस्थितियन में बिना कोनो उर्वरक और रसायन डरले कम आमदनी के स्तर पर भी उगावल जा सकाला। प्रधानमंत्री जी देशवासियन के थाली में श्री अन्न के मात्रा बढ़ौले के पुकार कैलें। ये तरह वहाँ के बतौली कि खेत से थाली तक मोटे अनाज के सबके फायदा होई। श्री अन्न जेके मोटा अनाज कहल जाला उकर दिन अब लगत बा फिर बहुर रहल बा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी तंजाकुर हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन सन 2023 के मेजबानी कैलस। इस सम्मेलन में एक स्वर से यह विचार उपजल कि मोटा अनाज भारत देश खातिर भविष्य के भोजन हवे। इस सम्मेलन में ये बात पर भी चर्चा भइल कि अब केहू के संदेह नहीं बा कि मोटा अनाज के उत्पादन, खपत, आयकर, निर्यात एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कारगर हुई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटा अनाज फसल के संसार भर में 75.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कैल जात बा। भारत के क्षेत्र में ये क्षेत्र में पांचवा बड़ा निर्यातक देश हवे, लेकिन दुनिया के कई देशन के मुकाबले एकर उत्पादन ज्यादा होला। भारत वर्ष में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र हवे। साल 2020 में भारत वर्ष दुनिया भर में मोटा अनाज के बदे 41% के योगदान करल, लेकिन यहो सच बा कि अपने देश में पिछले 50-60 वर्ष में एकर क्रमशः उत्पादन कम हो रहल बा। 1950 से लेके 2019 के बीच में मोटा अनाज के क्षेत्र 9.2 मिलियन हेक्टेयर में रहल, जौन की अब घट के 7 मिलियन हेक्टेयर हो गइल बा। राजस्थान बाजरा बदे और महाराष्ट्र ज्वार बदे पूरे देश में अग्रणी राज्य हैं। गौर करे वाली बात ये बा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलाव भेले के कारण अनाज के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ रहा बा। ऐसे बदलाव में मोटा अनाज जलवायु परिवर्तन के मात दे वाली साबित हो रहा बा। कृषि वैज्ञानिक लोग भी मोटा अनाज के महत्व पर प्रकाश डाल रहा बाटे। मोटे अनाज के खेती कम पानी पर और विषम जलवायु में भी हो रहा बा। ये खेती के प्रचार बुनियादी रूप में अपने देश के खेती के मजबूत बनाई इमे कौनो संदेह नहीं बा। हैदराबाद में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर लगातार इस दिशा में खोज कर रहल बा। इस शोध के केंद्र मोटे अनाज के हजार किस्म के विकास पर बा। जलवायु और जमीन के हिसाब से मोटा अनाज के खेती के बढ़ावा देने का काम युद्ध स्तर पर अपने देश में चल रहल बा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मोटा अनाज उत्पादन के ढेर संभावना बा। बिहार के सत्र 2015-16 में मोटा अनाज पैदा कैले के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान रहल। कृषि और एके ये क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजल गयल। यहाँ के किसान लोग मोटा अनाज के खेती कैल भूलल नहीं बाटे। मोटा अनाज के उत्पादन में बहुत कुछ कैले के जरूरत बा। ये अनाज गरीब राज्य और किसानन बदे ज्यादा कारगर हो रहल बा। मोटा अनाज के उपजौले से लागत कम आवेले और परिश्रम भी कम करे पड़ाला। ये फसल कम उपजाऊ मिट्टी में भी हो जाले। मोटा अनाज खातिर कम पानी और उर्वरक और कीटनाशक का कम से कम प्रयोग होला। मोटा अनाज के सेवन कैले से किसान भाई भी स्वस्थ रही है, उनके सेहत चुस्त दुरुस्त रही। काहे से की इन अनाजन में भोजन के अनेक खनिज मिलाला, जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, लौह तत्व, विटामिन और प्रोटीन इत्यादि के भंडार है। मोटा अनाज किसान के अपने उपजौले खातिर प्रोत्साहित करे खातिर बहुत कुछ करे पड़ी। अगर मोटा अनाज के प्रोत्साहन मिले तेकर दूरगामी परिणाम हुई। बढ़त वैश्विक खाद्य संकट में जहां समुद्री आहार के अपनौले के प्रचार हो रहल बा, वहां दुनिया भर के आंकड़ा के गेहूं और धान के उपज कम हो रहल बा। ऐसे में अगर भारत के एक बड़ जनसंख्या मोटा अनाज के अपनावे तो बहुत बड़ी बात हो सकेले। प्रयोग करे वाली बात ई बा कि स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुई, कीटनाशक और रसायन के प्रयोग कम हुई और पर्यावरण के शुद्धि हुई। खाद्यान्न के मामले में हमारे देश के इतना उर्वरता बा कि श्रीहन्न के बढ़ावा देहले के केंद्र और प्रदेश सरकार के अभियान सफल हुई। आय में प्रगतिशीलता भी आई। ये किसानन के खुद मोटा अनाज खेती करे के चाही। आस पास गांवन के भी किसानन के इस दिशा में प्रेरित करे के चाही। इन किसानन के संस्था दू चार नाही बल्कि 100 के आस पास बा जौन कर प्रेरणा लेके खेती कर रहल बा। मौजूदा समय में छोटी जोत में इन किसानन के कुल 20 हेक्टेयर खेत में मोटा अनाज खेती उत्तर प्रदेश के जंगल कौड़िया ब्लॉक में हो रहल बा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जंगल कौड़िया ब्लॉक के 3 गांव साखूखोर, बरन और जगदीशपुर के 100 किसानन के श्रीयन उपजौले के प्रेरणा दिहलस। एकरे खातिर किसानन के मड़ुआ, टांगुन, कोदो, ज्वार और बाजरा के बीच भी उपलब्ध करौलस। मोटा अनाज के खेती में सबसे बड़ समस्या बीज न मिलने के हवे। बीज न मिलला से ये किसान चाह करके भी एकर खेती बुवाई नहीं कर पावेल। लेकिन गोरखपुर साखूखोर में मिलेट सीड बैंक के स्थापना भइल बा। खुशी के बात ई बा कि किसान भाई लोग ये रुचि लेत बाटे, आय के पैदा कर रहल बाटे। आ यहाँ बात यो बा कि पहले ही गरीब के भोजन रहल, लेकिन अब मोटा अनाज ते अमीर लोगन के भोजन बन गइल बा। कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट मोटा अनाज से बन रहल बाटे, जौन की बड़ी बड़ी माल और सुपर मार्केट में ऊंचे दाम पर दिक्कत हवे। निर्यात बढ़ने के साथे साथे घरेलू खपत में भी एकर तेजी से विकास हो रहल बा।

0: एकरे नाते तमाम कृषि संस्थान किसानन के मोटा अनाज उत्पादन खातिर प्रोत्साहन दे रहल बाटे। ई तय बा कि आगे आने वाली समय में मोटा अनाज के उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ी और जौने से जनता जनार्दन के जरिए अब ये अनाजन के इस्तेमाल ओकरे भोजन में इस्तेमाल होके लगी तब निश्चय बा कि ओकरे सेहत में भी माकूल सुधार होई।
1: सेहत का राज मोटे अनाज, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आद्य प्रसाद से ये वार्ता। इसके साथ ही भोजपुरी भाषा का कार्यक्रम देर समार अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत भोजपुरी लोकगीत।

प्रादेशिक संगीत में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे किशोरी अमोनकर से राग संपूर्ण मालकौंस में गायन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।

0: करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपये है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है, ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा, ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े, और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था, घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन

0: कर सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने एसआईटी को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को एसआईटी के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी जीरामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 23 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे एक ही कलाकार KK के गाए कुछ फिल्मों से लिए गए गाने।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से

0: जीवन सुहाना, ससुर समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पार्श्व गायक केके के गायक कुछ फिल्मों से लिए गए गाने। आज इन फिल्मों के गाने आपने सुने, उनके नाम हैं जन्नत, रोग, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज़, गैंगस्टर और तुम मिले। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए साधना सिंह से कहानी। शीर्षक है समय की मांग।
1: समय की मांग। जी हाँ, समय की मांग को सही समय पर समझ लेने और खुद की परिस्थितियों के अनुसार बदल लेने से जिंदगी आसान हो जाती है। आज की कहानी दो पुरानी घनिष्ठ सहेलियों की है, प्रिया और सुमन। क्या यार, इतनी भी क्या व्यस्तता है? तुम एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, हर बार मुझे ही आना पड़ता है तुमसे मिलने। प्रिया ने बैग सोफे पर लगभग फेंकने के साथ सुमन के पीठ पर हल्का सा धौल जमाया था। आते ही शुरू हो गई हमेशा की तरह। सुमन ने हंसते हुए प्रिया को गले लगाया था। थोड़ा ठंड रख, पानी वानी पी, फिर शिकायत करती रहना, जो सुनाना हो सुना लेना, सुमन ने हंसते हुए कहा और पानी लेने किचन की तरफ चल पड़ी। तो पीछे पीछे प्रिया भी चल दी। तू चाय बना, पानी मैं खुद पी लूंगी, इस घर में मेहमान नहीं हूं मैं, प्रिया ने कहा और फ्रिज से पानी का बोतल निकालकर गिलास में पानी डालने लगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए गैस पर चाय का पानी रखा और ट्रे में कुछ नमकीन बिस्किट डाले। तब तक चाय भी तैयार हो गई और चाय लेकर दोनों सहेलियां बेडरूम की तरफ चल पड़ी। देखना, किसी दिन इन्हीं जिम्मेदारियों में यूं ही घुटती रह जाएगी, लाइफ एक ही बार मिलती है, प्रिया चाय का सिप लेते लेते फिर शुरू हो गई। यार, सब अपने अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, तू ज़्यादा सोच रही है, इतना सोचेगी तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, सुमन ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। चल और सुना, बच्चे और जीजाजी कैसे हैं? सब ठीक है, मस्त है, प्रिया ने यूं ही जवाब दिया। दोनों स्कूल टाइम की सहेलियाँ देर तक नई पुरानी बातें करती रहीं। दोनों बचपन की सहेलियाँ तो थी ही, शादी के बाद भी एक ही शहर में आ गईं और आज भी दोनों की दोस्ती पहले की तरह जवान थी। प्रिया का ससुराल काफ़ी संपन्न था, जबकि सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। प्रिया जब भी सुमन से मिलने आती थी, सुमन हमेशा एक अजीब सी कमतरी के एहसास से घिर जाती थी। हालांकि उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वह सोचती थी, प्रिया कितना जिंदा दिल, कितनी मस्त मौला जिंदगी जी रही है, जबकि मैं, मुझे तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। प्रिया के पति का अपना बिजनेस था, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, क्या नहीं था उसके पास। दो बेटे थे जो बोर्डिंग में पढ़ रहे थे और सास उसके छोटे बेटे के साथ रहती थी, क्योंकि प्रिया और उनका मन कभी नहीं मिला। ससुर जी का कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था। ले देकर वही मियाँ बीबी संग थे, जिसमें मियाँ बिजनेस में बिजी थे और बीबी सोशल लाइफ में एक्टिव थी। इधर सुमन भी पढ़ी लिखी और समझदार गृहिणी की भूमिका में थी। पति उसके भी अच्छा कमाते थे, पर इतना कि जिसमें उनकी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाए। सुमन के सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे और बच्चे वही साझा परिवार में पढ़ बढ़ रहे थे। शहर के ही ठीक ठाक स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। सुमन को यूं भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर प्रिया को हमेशा ऐसा लगता था कि सुमन घर में ही फंस के रह गई है। सही भी था, साझा परिवार का कॉन्सेप्ट अब कहाँ रह गया था। लोगों में न अब आपसी स्नेह और तालमेल रहा, ना ही सहन सकती, अब सभी को स्पेस चाहिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्रिया के दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो गए थे। बड़े ने दूसरे शहर में अपनी कंपनी डाल दी थी, तो छोटा बेटा US के एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। इधर सुमन का बेटा भी MBBS करके इंटर्नशिप कर रहा था और बेटी का बैंक में हाल ही में जॉब लगा था। इन सालों में सुमन के साथ ससुर गोलोकवासी हो गए थे। इन बीतते समय के साथ दोनों सहेलियों की दोस्ती पर कोई आँच नहीं आया था। दोनों आज से भी कहीं ज़्यादा पक्की सहेली बन गई थी। अचानक एक रात मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। सुमन घबरा उठी। हे राम, आधी रात में किसका फ़ोन है? उसने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया। सुमी सुमी, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, रवि को दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी आ जाओ सुमी, मुझे डर लग रहा है, डॉक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्रिया बोलते बोलते लगातार रो रही थी। एक पल को तो सुमन सुन्न रह गई, पर फिर तुरंत ही खुद को संभाला। प्रिया घबरा मत, हम अभी आ रहे हैं। सुमन ने मोबाइल डिस्कनेक्ट करने के साथ बगल में सोए अपने पति आकाश को जगाया। दोनों आनन फानन में अस्पताल की तरफ से भागे। प्रिया ने जैसे ही सुमन को देखा लपक कर गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। देख सुमन, क्या हो गया है? डॉक्टर बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं रवि के बिना जी नहीं सकती हूं। क्या अंटसंट सोच रही है, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टरों को क्या पता, वो तो कुछ भी कहेंगे। सुमन ने थोड़ा डपटने के लहजे में प्रिया को ढांढस बधाया। थोड़ी देर में आकाश कैंटीन से 3 चाय लेकर आए। ले थोड़ा सा पी ले, जाने कब से कुछ खाया भी नहीं होगा, सुमन ने चाय का गिलास जबरदस्ती प्रिया को पकड़ाते हुए कहा। सुमन और उसके पति के आ जाने के बाद प्रिया को बहुत तसल्ली मिल गई थी। बच्चों की क्या खबर है? बच्चों को खबर दिया है भाई साहब का? आकाश ने पूछा। हाँ, प्रिया ने हामी में सर हिलाते हुए कहा। जीजा जी को यह अचानक क्या हो गया? तू तो हर साल अपना चेकअप और जीजा जी का कराती रहती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया शांत हुई तो सुमन ने पूछ लिया। पता नहीं कौन सी टेंशन है इनको, कभी बैठकर दिल की बात की भी तो नहीं इन्होंने। हर जगह जाने किस किस तरह की प्रतियोगिता पाल रखी है। सबसे आगे सबसे सही चलने के दौड़ में हम सबको पीछे छोड़ दिया। पैसा तो बहुत कमाया पर बाकी कुछ नहीं बचा है। अब हमेशा हंसती हंसाती प्रिया के मुंह से आज ऐसी बात सुनकर सुमन अवाक हो गई। आकाश भी सुमन का मुंह ताकने लगा था। बच्चों को सबसे आगे रखने के होड़ में उन्होंने खुद से मुझसे कच्ची उम्र में ही अलग कर दिया। उन्हें परिवार से माँ बाप से कभी जुड़ने नहीं दिया। मसीनी लाइफ जीते जीते भावनाओं भी मसीनी हो गई सबकी। प्रिया बोलते बोलते आकाश की तरफ मुड़ गई। जीजा जी अब सही कहते थे, सही सोचते थे, बच्चों को कम से कम बचपन में तो माँ बाप से जुड़ा रहने देना चाहिए। शायद बात अधूरी छोड़कर प्रिया एक बार फिर रोने लगी। सुमन ने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना दिया। लेकिन प्रिया, अभी कुछ हुआ है क्या? जीजा जी को अचानक इतना बड़ा हार्ट अटैक? थोड़ी रुक के सुमन ने पूछा। छोटे ने वही US में स्पेन के एक लड़की से शादी कर ली है। दोपहर में हमें बस एक सूचना भेज दी थी, प्रिया ने टूटे मन से कहा। ओह, सुमन बस इतना ही कह सकी। तुम तो जानती ही हो, बड़े ने बेंगलोर में घर ले लिया था और अब एक लड़की भी पसंद करके लिविन में रहने लगा है। क्या फायदा हुआ सुमी, सारी जवानी इन्हीं बच्चों के लिए तिल तिल कर अपना सारा सुनहरा भविष्य जला दिया। अब ये बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये जायदाद हमारे बच्चों को बांध कर नहीं रख सके।

0: और अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि समय के साथ उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन अब क्या हो सकता है, यही सब बात कई दिनों से इनको खाए जा रही थी। पर इतना असर हो रहा था मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बहुत करीब मुझे भी तो नहीं रखा इन्होंने। पेशेंट को होश आ गया है, कोई एक लोग जाकर मिल सकते हैं, प्रिया बोलती जा रही थी। इतने में नर्स ने आकर बताया। सुमन ने प्रिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा, देखो प्रिया, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त बिना किसी सुबह शिकायत के जीजा जी की हिम्मत बन जाओ। तुम्हें मजबूत देखकर उन्हें भी कठिन समय से निकलने के लिए संबल मिलेगा। जाओ और अब अपने पति को लेकर वापस आना। प्रिया ने हामी में सिर हिलाया। आईसीयू में इस तरह से रवि को लेटे हुए देखकर प्रिया का दिल मुंह को आ गया। रवि प्रिया की तरफ लाचारी से देख रहे थे। प्रिया ने आगे बढ़कर रवि का हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया। प्रिया की आंखों से मानो गंगा जमुना बह रहा था। सबके लिए बहुत दौड़ लिए रवि, अब मेरे लिए मेरे पास ठहर जाओ, मेरा भी तो हक है ना तुम पर, प्रिया ने टूटे दिल से कहा। उसकी ऐसी बात सुनकर रवि के भी आंखों से आंसू बहने लगा था। यही तो चाहते हैं ना कि बच्चे खूब तरक्की करें, खुश रहें, और वह खुश हैं अपनी खुशी में। हमारे लिए का यह संतोष की बात नहीं, प्रिया ने आगे कहा। रवि ने भी हामी में पलकें झपका दी। मैम, पेशेंट को अब आराम करने दे, इन्हें ज़्यादा बोलना और टेंशन लेना मना है, नर्स ने आकर प्रिया को टोका। रवि, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ आपका, सख्त ज़रूरत है मुझे आपकी, याद रखिएगा, प्रिया ने रवि का माथा चूमा और बाहर आ गई। सुमन ने बाहर आते प्रिया के चेहरे पर उमड़े विश्वास और प्रेम को पढ़ लिया था। प्रिया बार बार सुमन और आकाश को घर जाने के लिए बोल रही थी, पर दोनों ने मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने रवि को भी खतरे से बाहर नहीं बताया था। साली साहिबा, आप तो खुशखबरी के साथ ही घर जाएंगे, आकाश ने प्रिया से कहा। सुबह के उजाले के साथ ही डॉक्टरों की टीम ने रवि को खतरे से बाहर बता दिया। सबने राहत की सांस ली। प्रिया, अब हम घर जा रहे हैं, फ्रेश होकर थोड़ा काम समेट कर आती हूँ और तेरा नाश्ता भी लेते आऊँगी, सुमन ने कहा। क्यों परेशान होगी, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ और आराम करो, मन न माने तो शाम तक आ जाना, वैसे भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं, जब हुआ तो यहीं से कुछ खा लूँगी, प्रिया ने सुमन से कहा। ज़्यादा हीरोइन न बनो, आ जाऊँगी मैं, बढ़िया आई, सुमन ने प्रिया को डांटा। तभी आकाश चाय लेकर आ गए। चाय पीने के बाद सुमन ने प्रिया को गले लगाया। आती हूँ, कहकर आकाश के साथ घर के तरफ चल पड़ी। रास्ते पर सुमन और आकाश दोनों चुप अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। घर पहुंचकर आकाश ने गाड़ी से उतरते हुए सुमन को आवाज़ दी, सुमी। सुमन ने आकाश की तरफ देखा। सुमी, परवरिश में भले ही अंतर हो, पर एक बात तो सीखने लायक है, समय बहुत बदल गया है और समय से ज़्यादा इंसान और उसकी भावनाएं। नई पीढ़ी से कोई अपेक्षा रखने लायक नहीं है, नहीं तो उनकी उपेक्षा ऐसे ही दिल तोड़ देगी, आकाश ने कहा। सुमन ने आकाश की तरफ देखा। वह समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर हम माँ बाप ही तो हैं कि बच्चे कामयाब हो और खुश रहें, तो उनकी खुशी में खुश होने में ही हमारी भलाई है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को उतनी अहमियत भले न दे, पर माँ बाप तो उन्हीं के लिए जीते हैं, आकाश ने आगे कहा। समझ रही हूँ मैं आपका मंतव्य, जिंदगी को अब एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा हम सबको। चलिए आप फ्रेश होकर आराम कर ले, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अस्पताल जाऊँगी, प्रिया अकेली है, सुमन ने घर के भीतर जाते जाते कहा और मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं उसके बच्चे आएंगे कब तक आएंगे, या आएंगे भी या नहीं।
1: समय की मांग। अभी आप सुन रहे थे साधना सिंह से ये कहानी। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
3: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
2: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
3: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी,

0: स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
5: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: इस अंतराल के बाद भी सुगम संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं हरिहरन से कुछ गजलें।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल। ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: तो सुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी

0: बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
1: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
0: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
1: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
0: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
1: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
0: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर

0: साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है,
1: जी
0: जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गाँव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने,
1: जी
0: तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म। हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये
1: जी
0: मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेस लाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोर्सा में जो सब्सिडाइज रेट में
1: जी
0: जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
1: जी
0: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
1: जी
0: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं। हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम

0: वो बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, इस इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं कि
1: जी
0: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से, और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी
1: जी
0: करप्शन ये सब है वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमिकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
3: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता

0: सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
1: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है। मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरेललिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
0: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
1: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक ले जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
0: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट

0: वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन करे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर आप हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का।

अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है SG बर्मन ने। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। फिल्म का नाम है गाइड।

0: अगला गीत आशा भोसले और देवानंद की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है महल।
1: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए ज्वेल थीप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

महल फिल्म के इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दुनिया फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है नीरज ने और संगीत से सजाया है एस जी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज लीजिए सुनिए विदुषी किशोरी अमोनकर से राग संपूर्ण मालकौंस में गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर से राग संपूर्ण मालकौंस में गायन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।
1: कुमार

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे

0: से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH 148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 km long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2020.

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chestellor Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। आज की यह सभा संपन्न होती है। कल सवेरे 5:50 पर अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।